0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है, आपका इस्तकबाल और ये जो मोहब्बत और इंतजार का एहसास है, ये हमेशा से इंसानी जज्बात का हिस्सा रहा है। चाहे वो मोहब्बत को बयां करता हुआ कोई नगमा हो या एक सादा खत जो दूरियों के बावजूद रिश्तों का ताल्लुक गहरा कर देता है। और खत लिखने की कला आजकल के वक्त में तो दोस्त देखो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, मगर उस आर्ट के बारे में बशीर बद्र साहब का मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर है। कहते हैं कि खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ की जिसने कोई जेवर नहीं देखा। आए हाय, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो आर्ट के कद्रदान आज भी बचे हैं, उनके चेहरे पे ये शेर मुस्कान ला देगा। बहरहाल सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirci, it's hot.
1: Mirci.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
3: Hello.
4: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
3: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
4: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ, थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
3: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
4: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
3: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
4: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
3: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
4: चलो
3: मतलब
4: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
3: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
4: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
3: टाइम खराब कर रहे हैं,
4: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
3: मेरा क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
4: तो मेरा यूरिन
3: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
4: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
3: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
4: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा।

0: भाई जाकर जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे,
1: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूनियन,
0: मैं नहीं दे रहा तुझे जहाँ कंप्लेंट करनी है कर दे,
1: ठीक है मैं निकलवा लूंगा और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
0: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट जहाँ पे भी जाना है,
1: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
0: हाँ ठीक है देख ले देख ले,
1: ठीक है भाई,
0: हाँ ठीक है।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
8: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
8: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
9: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
10: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त आ चला है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर, अजी शायर क्या खुदाए सुखन से, मीर तकी मीर से, लफ्ज़ो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर को अभी 300 साल पूरे हुए 20 सितंबर को। और मीर साहब उर्दू गजल के वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन रहता है। मीर ने उन लोगों से भी प्रशंसा पाई जिनकी अपनी शायरी मीर से बहुत अलग थी। उनकी शायराना अजमत को इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। मीर का आजकल मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर चल रहा है, कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। कितनी दारदार बात कितनी आसानी से कह जाती। दिल की बीमारी होती ऐसी है कि जान और सुकून लेके ही जाती है। खैर मुलायजा फरमाए, अगली गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

एनर्जी इट्स हॉट ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: Nine Nights, One Divine Spirit.
3: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
2: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
3: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
2: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। आल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th अक्टूबर। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
12: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और इंसान का मूड भी ना अगर रेगुलेट ना किया जाए तो एक बड़ी इम्पल्सिव चीज बन जाता है, पल में बदल जाए। तभी कहते हैं कि दिल के घोड़े को हमेशा लगाम लगा के रखनी चाहिए। कैसर शमीम साहब का एक बड़ा बेहतरीन शेर है, कहते हैं कि मौसम अजीब रहता है दिल के दयार का, दयार मतलब शहर, मौसम अजीब रहता है दिल के दयार का, आगे है लू के झोंके भी ठंडी हवा के बाद। है ना खूबसूरत शेर। पढ़ते हुए मुझे ये भी याद आता है कि गर्लफ्रेंड्स के मूड को भी अगर डिस्क्राइब करना हो तो इससे बेहतर शेर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी मोहतरमा पे कोई शेर ध्यान आता हो तो लिख भेजे मेरे इंस्टा NFB मिर्ची ताशी MIRCHI पर। अगली बार सुना दिया जाएगा और क्या। मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और सच में आ, कुछ गाने आपके जहन को अकेला नहीं छोड़ते।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: और मिर्ची महफिल पर अब वक्त आ चला है कि ऐसे ही एक गाना मैं आपके नजर करूं, आपका ताशी आपके नजर करे। बिल्कुल, और आज का जो गाना है वो है सुरेश वाडेकर साहब का। और सुरेश वाडेकर साहब का वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो कि उनका नाम लेते ही मेरे जहन में कौंधता है। पेशे खिदमत है सिर्फ मिर्ची महफिल पर।

अब देखें, आज न जाने क्यों मेरे जहन में बॉलीवुड में जो हमारी गजलों ने बड़ा नाम किया वो चढ़ी हुई है, तो अगला ताशी अनप्लग्ड भी शायद आप कोई बॉलीवुड में बड़ी फेमस गजल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
4: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और यादों का एक अपना जादू होता है जो हमें कभी बचपन की कागज की कश्ती की याद दिलाता है, और कभी वो लम्हे जब आप अपने किसी अजीज की यादों में डूब जाते हैं। जब लोग कहते हैं कि ताशी भाई आप तो इतना पढ़ते हैं लिखते हैं, आदत कैसे बनी हुई है, तो मैं उन्हें जानिसार अख्तर साहब का ये शेर सुना देता हूँ बस, कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले ये किताबें, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। यादों का ये सफर भी कितना अजीब है यार, जहां एक तरफ बचपन की यादें हैं और दूसरी तरफ वो हसीन लम्हे जो अपनों के बिना अधूरे लगते हैं। बहरहाल ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
0: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त आ चला है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आपको सुनाया जाए आज का किस्सा जो आ रहा है अकबर इलाहाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम खालू के आलू। अकबर इलाहाबादी दिल्ली में ख्वाजा हसन निजामी के यहाँ मेहमान थे। सब लोग खाना खाने लगे तो आलू की तरकारी अकबर को बहुत पसंद आई। उन्होंने ख्वाजा साहब की दुख्तर हूर बानो से जो खाना खिला रही थी पूछा कि बड़े अच्छे आलू हैं, कहां से आए हैं? उसने जवाब दिया कि मेरे खालू बाजार से लाए हैं। इस पर अकबर ने बिना सोचे ये शेर पढ़ा, लाए हैं ढूंढ के बाजार से आलू अच्छे, लाए हैं ढूंढ के बाजार से आलू अच्छे, इसमें कुछ शक नहीं है हूर के खालू अच्छे। वाह जी वाह वाह वाह। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड एक करेंसी होती ना तो उसमें अकबर साहब करोड़पति होते। स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल और अगली गजल पेशे खिदमत है आपके लिए। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

लता किसी तारीफ के नहीं बल्कि परस्तिश के काबिल हैं। उनकी आवाज़ सुनने के बाद कुछ ऐसा आलम तारी हो जाता है जिसको बयान करना बहुत मुश्किल है। यूं समझिए जैसे कोई दरगाह या मंदिर में जाए तो वहाँ पहुँचकर इबादत के लिए खुद ब खुद सर झुक जाता है और आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपकी वोकैब में जोड़ा जाए एक और उर्दू का लफ्ज। हाँ जी, और आज का लफ्ज है इनायत। इनायत का मानी होता है फेवर करना या फिर एहसान या फिर उपकार। नजीर बनारसी साहब का बड़ा सरकास्टिक सा शेर है कि ये इनायतें गजब की ये बला की मेहरबानी, ये इनायतें गजब की ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी तो किसी और की जबानी। है ना, अगर ये शेर और से आपको थोड़ा सा साफ दिखाऊं इनायत का मतलब, तो फरत एहसास साहब का शेर है कि तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है, तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है, हमारी चीज फिर हमको इनायत क्यों नहीं करते। तो जस्ट लाइक दैट आप वाकिफ हो गए एक और उर्दू के लफ्ज से इनायत, जिसका मानी हुआ फेवर। अब इस लफ्ज का इस्तेमाल एक सेंटेंस में, बड़ा खूबसूरत सा सेंटेंस बनाइए, इस लफ्ज का इस्तेमाल करिए और हमें लिख भेजिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ। और कई लोगों को ये लगता है कि एक शेर सिर्फ दो लाइंस को राइम करा देने भर से बन जाता है, जो हमारी पूरी इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है। आप इंस्टाग्राम अगर स्क्रॉल करेंगे कई बार तो आपको ऐसी ऐसी दो लाइनों को शेर बुला दिया जाता है और उसके बाद नीचे गालिब लिख दिया जाएगा। बाप रे, गालिब अपनी कब्र में लौट रहा होगा, भाई साहब की ये सब क्या कह दिया इन्होंने मेरे। हाँ, तो मैं आपको आज बताने आ गया हूँ कि किन्हीं भी दो लाइनों को शेर कहने के लिए उन्हें बहुत सारे पैरामीटर्स पे गुजरना पड़ता है, उन पे खरा उतरना पड़ता है। पहले तो उन्हें बहर में होना पड़ता है। अब आप पूछेंगे बहर क्या होती है, तो बहर का मतलब होता है मीटर। मॉडर्न जमाने में अराउंड 32 बहरे हैं, 32 मीटर्स हैं बेसिकली जिनका इस्तेमाल होता है, मगर उनमें से भी 15-16 ऐसी बहर हैं, ऐसे मीटर्स हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान बस दो लाइनों को जोड़ के कह रहा है तो शेर नहीं है दोस्त, वरना मोहम्मद अलवी साहब का शेर तो जिंदाबाद है ही कि शेर तो सब कहते हैं, क्या है चुप रहने में और मजा है। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपके ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi, no laka har. Presented by Virani Jewelers.
2: नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब पता करते हैं हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है. हेलो.
3: हाय प्रिसला, गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
3: आई एम गुड, दिस इज अनु.
2: हाय अनु, क्या चल रहा है नवरात्रि में?
3: कुछ नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है. आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 years and 8 months ओल्ड, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन, डू सम डांसिंग विद देम.
2: ओह दैट्स सो क्यूट. तो चलिए जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको फटाफट से बिल्कुल क्विकली आंसर करना है.
3: श्योर.
2: टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, जल्दी से मुझे बताइए विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी.
3: जयपुर.
2: ऑलराइट, दैट्स द करेक्ट आंसर. जयपुर इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
1: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है.
1: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: Radio Mirchi is on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। और लोगों के बीच होने से अगर तन्हाई मिटती तो क्या ही बात होती। गुलजार साहब की लिखी वो गजल याद आती है, कहते हैं कि जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। अपने साये से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। और तन्हाई का कीड़ा तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों के बीच में ही काटता है, जब आपको अपने ही आसपास सबसे अनरिलेटेबल, सबसे डिस्कनेक्टेड सा फील होने लगे। खैर, मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है,
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: पहले तुम,
2: पहले तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम,
2: तुम,
3: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और बस यूं ही वक्त आ चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ। हाँ जी, अच्छा सफर ऐसे ही कब बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन आज ना ताशी अनप्लग्ड में मैं आपको फिर से एक बॉलीवुड से जुड़ी हुई गजल नजर करूंगा। और ये जो गजल है ये हमारे गुलजार साहब ने लिखी और बड़ी फेमस हुई। मतलब हर बच्चे बच्चे की जबान पे गजल है, जगजीत जी की आवाज में गजल है। ज्यादा वक्त जाया करे बगैर, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। पेश खिदमत है आपके लिए।

चलिए अब मुलाकात होगी हफ्ते के उस पार, लेकिन छोड़ के भी जाऊंगा आपको जगजीत जी और लता जी की ही आवाज की एक गजल के साथ। सजदा करके एक बड़ा एपिक एल्बम आया था इन लोग का, एंड दिस वन इज गम का खजाना, तेरा भी है मेरा भी। आए हाय मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप, और मैं मिल जाऊंगा आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस पूरी फिल्म में जया बच्चन के जितने भी शॉट थे ना, उनको बस हाफ प्रोफाइल तक रखा गया था। पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। आज जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है मूवी चुपके चुपके। ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी, जया बच्चन थी इसमें, एंड जया बच्चन वॉज एक्चुअली प्रेग्नेंट ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म। तो उनकी जितने भी शॉट लिए गए ना, उनको सिर्फ हाफ तक रखा गया था, मतलब कहीं पे भी उनकी बेली को नहीं दिखाया गया है। तो आज इस फिल्म के बारे में ना ढेर सारी मिलकर के गप्पे करेंगे, इनके बहुत सारे गाने भी होंगे, ओनली विद मी श्रेया ऑन पुरानी जीन्स। तो गाने सुनकर के वापस आओ, फिर शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। नहीं यार, वार्तालाप बड़ा पुराना वर्ड है, आज की गप्पे ये बड़ा मिलेनियल वर्ड है। तो शुरू क्या करें, बस आज की बातें आप और मैं मिलकर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने में भी और इस जमाने में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स को नेकेड आइज से देखोगे तो इट्स वेरी हार्मफुल, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे पता है इस फिल्म को रिलीज किया था, क्योंकि 1980 में सोलर एक्लिप्स हुआ था एंड गवर्नमेंट वांटेड कि हर कोई अपने घर में बैठे। अब उसके लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन होता था दूरदर्शन, और इसीलिए इस फिल्म को सूर्य ग्रहण के दौरान रिलीज किया गया था ऑन दूरदर्शन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ मैं बात कर रही हूँ आज मूवी चुपके चुपके की। ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म बनाई थी, जया बच्चन अमिताभ बच्चन भी थे इस फिल्म में, और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1980 में, सो दैट जब सोलर एक्लिप्स हो रहा है तो भाई लोग घर के बाहर ना निकले। तो उस जमाने की ऐसी कुछ सिंपल सिंपल यादें और बातें लेकर के इकट्ठा करके आती हूँ, यू कम राइट बैक, क्योंकि अगली बड़ी चटपटी सी बात है इसी फिल्म की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बच्चन साहब और जया बच्चन पीछे पड़ गईं कि उनको इस फिल्म में रोल चाहिए है। ऋषिकेश दा उनके पास नहीं गए थे, वो आए थे ऋषिकेश दा के पास। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। एंड उस जमाने में ना इंडस्ट्री में सिर्फ दो दादा होते थे, एक एस डी बर्मन साहब और दूसरे ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी जिनके लिए ह्यूज हाई रिगार्ड्स होल्ड करते थे दोनों बच्चन, अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन। सो व्हेन दे हर्ड कि ऋषिकेश दा एक फिल्म बना रहे हैं चुपके चुपके, वो दोनों उनके पास गए कि हमें तो रोल चाहिए दादा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई फिल्म बने और उसमें हम ना हो, जैसे कि अभिमान। वेल, तो दादा ने उनको एक बात समझाई, लेकिन दोनों इस बात पे अग्री ही नहीं किए। और फिर ना दोनों ने ये फिल्म कर भी ली, जबकि इन दोनों के बहुत ही छोटे छोटे रोल्स थे। क्या समझाया था मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ गानों के उस पार। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की

0: पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दा ने कहा कि ये रोल तुम दोनों के लिए बहुत छोटे, यू आर टू बिग स्टार्स फॉर दिस रोल, लेकिन ये दोनों माने ही नहीं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। वेल 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्टेड। मूवी का नाम है चुपके चुपके। इस फिल्म में बहुत छोटा सा रोल किया है बच्चन साहब ने एंड जया बच्चन जी ने। सो ऋषिकेश दा को ये दोनों अपने फादर मानते थे और प्यार से उनको दादा कहते थे। सो जब इन दोनों को पता चला कि ऋषिकेश दा अभिमान के बाद ये फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है चुपके चुपके और इसमें इन दोनों को नहीं लिया है, वो दोनों पहुंच गए ऋषिकेश दा के घर और उनसे कहा कि दादा हम दोनों क्यों नहीं है इसमें। तो पता चला कि रोल बहुत छोटा है और वो न्यू फेसेस चाहते थे, जैसे कि धर्मेंद्र जी को चाहते थे। तो भाई बच्चन साहब ने कहा रोल चाहे जितना छोटा हो या फिर एक कैमियो ही क्यों ना हो, वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म। फिर क्या, ऋषिकेश दा ने कहा ठीक है भाई आ जाओ। सोचो ये कितनी खूबसूरत बात है कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन किसी को इतना मानते थे कि उनकी फिल्म में छोटा सा रोल मिल जाए ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इसी फिल्म चुपके चुपके का एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Singo, chale na tar tu aaj gajni de bazaar de sun lage hoye ne. Haan sana nu narkan de darwaja dikhaunga.
2: मस्ताने नाल वेखो पंजाबी सिनेमा दे नवे दौर दी शुरुआत स्टारिंग तरसेम जस्सा सिमी चहल गुरप्रीत कुकी होर भी कई नामी कलाकार 25 अगस्त नु नेड़े सिनेमा घरां विच

पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। मूवी का नाम है चिपके चिपके, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। सो धर्मेंद्र जी को इस फिल्म में लीड हीरो का रोल मिला और ऋषिकेश मुखर्जी आशा पारेख को चाहते थे उनके ऑपोजिट एज इन एज द लीड हीरोइन। लेकिन फिर धर्म पाजी ने सारी कसरतें कर डाली कि भाई आशा पारेख को रिप्लेस करके शर्मिला टैगोर को लाया जाए। धर्म पाजी को लगता था कि शर्मिला टैगोर ऑलरेडी एक हिट हीरोइन थी, बड़ी सारी पिक्चर्स जो हिट थी वो कर चुकी थी, फिर चाहे वो अमर प्रेम हो, अनुपमा हो, एन इवनिंग इन पैरिस हो, सो मैनी ऑफ देम। तो फिर उन्होंने ना काफ़ी जद्दोजहद करके ऋषिकेश मुखर्जी को मना लिया। फाइनली ऋषिकेश दा ने भाई कहा चलो अपनी जिद पूरी करो, ले आओ शर्मिला को। एंड आशा पारेख जिनको वो अपना वर्ड दे चुके थे, आशा पारेख इस बात से काफ़ी नाराज़ हुई और उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने ये भी छापा था कि आशा पारेख ने आइरोनिकली धर्मेंद्र जी को ना इस बात का दोषी नहीं ठहराया, वो नाराज रही हमेशा के लिए ऋषिकेश मुखर्जी से। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म के सारे गप्पे मारेंगे मैं और आप मिलकर के। सो कम बैक राइट हियर, मैं हूँ श्रेया। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक और ऑफ कोर्स इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, आरजे SHREYA विद लव।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस में आप श्रेया के साथ, एक ऐसी मूवी जो उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर चुकी थी एंड पीपल लव्ड, बिकॉज ऋषिकेश दा की ना जितनी भी फिल्में होती थी उनके सिंपल प्लॉट होते थे और घरेलू जिंदगी से हमेशा रिलेट करती थी. सो इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्म पाजी, शर्मिला टैगोर. एंड इसी फिल्म का एक बड़ा प्यारा सा गाना है, सुनाती हूँ आपको समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस सॉन्ग. सो ये गाना किशोरदा और रफी साहब ने एक साथ गाया, सुनना. अब हुआ ये कि इस गाने का एक स्टैंजा तो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, दोनों एक साथ गा रहे थे, बट अगले स्टैंजा के लिए ना ये हुआ कि भाई आराम से गाएंगे इसको. और उस आराम से में ही रफी साहब को देश के बाहर जाना पड़ गया. अब क्या होता, क्योंकि गाना तो दोनों एक साथ गा रहे थे, फिर क्या किशोरदा मैदान में उतरे और जो अगला स्टैंजा है वो जब आप सुनोगे ना तो किशोरदा ने सोलो ही गा करके ख़त्म कर दिया, निपटा दिया. यही गाना कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स. दिस इज़ मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अभी मेरे साथ में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं। लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है। हेलो,
3: हाय, माय नेम इज यास्मिन।
2: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम।
3: थैंक यू।
2: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है?
3: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम। सो या, एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन।
2: ओह, दैट्स स्वीट। सो इंडिया में कहाँ से हुआ?
3: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे।
2: बॉम्बे, ऑलराइट। तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है।
3: Sure.
2: विगानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए।
3: द गंगा रिवर।
2: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर। कंग्रेचुलेशन। और आप अगले राउंड में मूव करती हैं।
1: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ही साल में इंडियन ऑडियंस ने इन दोनों के दो रूप देखे. 1975, the year that actually was magnificent if we talk about the history of Indian cinema. एक तरफ इन दोनों की मूवी शोले रिलीज हुई और दूसरी तरफ इनकी फिल्म रिलीज हुई कॉमेडी वाली चुपके चुपके. शोले जिसमें एक्शन ही एक्शन था, दूसरी तरफ चुपके जिसमें कॉमेडी ही कॉमेडी थी. और मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन एंड धर्मपाल जी की. ये इन दोनों की पहली फिल्म थी चुपके चुपके, जिसने पूरी तरीके से कॉमेडी से इन दोनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था. एंड इट इज सेट कि धर्मपाल जी एंड अमिताभ बच्चन को इतना मजा आता था. दो इन दोनों के सीन्स बहुत कम हैं एक साथ, बट दे हैड द टाइम ऑफ देयर लाइव्स व्हाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म. वैसे ये बात तो ऋषिकेश मुखर्जी की हर फिल्म के लिए कही जाती है, सिर्फ उनकी नहीं यश चोपड़ा साहब की भी हर फिल्म के लिए कहा जाता था कि उनकी फिल्म के सेट्स नहीं होते थे, फैमिली पिकनिक हुआ करती थी. पुरानी जीन्स पे चुपके चुपके की ही बातें चलती रहेंगी विद मी श्रेया. सो बस कहीं भी मत जाना, कम राइट बैक.

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನ ಜೇ.

0: गोड़ा चतुर गोड़ा ये क्या रहा गोड़ा चतुर गोड़ा चतुर एक पे रहना या गोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम

0: वन एक कल्ट थी, दृश्यम टू ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम थ्री देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
4: Ah, ah, ah. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
5: Country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
6: What?
7: My name is Anthony Gonsalves.
6: Gonsalves?
7: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिस मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldie?
2: No. Anthony Gonsalves.
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves.
3: अच्छा सुनो, तुमको बच्चन साहब का घर जलसा, घर नहीं बंगलो, जलसा अंदर से देखना है क्या? तो फिर चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे। हेलो हेलो, वेलकम, दिस इज मी श्रेया, और ये फिल्म है चुपके चुपके, ऋषिकेश दा ने बनाई है, और इसमें जया जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, शर्मिला टैगोर हैं। मेन लीड में तो धर्मपा जी और शर्मिला जी थी, और छोटे से रोल में थे अमिताभ बच्चन एंड ऑफ कोर्स जया बच्चन। ओके, सो अगर आपको उनका घर, उनका बंगलो देखना है ना, तो आपको इस फिल्म का ये गाना देखना पड़ेगा, चुपके चुपके चल रही पुरवैया। एक्चुअली इस गाने के जितने भी शॉट लिए गए हैं ना, ये इसी बंगलो के अंदर लिए गए हैं। तब ये बच्चन साहब का बंगलो नहीं था, इसका नाम जलसा नहीं था, ये था एनसी सिप्पी साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी साहब का घर। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने ना कुछ दिनों के लिए ये गाना शूट करने के लिए उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था। सो इफ़ यू रियली वांट टू सी कि उस टाइम पे जलसा कैसा लगता था, ये वाला गाना देख लेना। मुझे तो बड़ा मजा आया देख करके। एक बड़ा सा टेरिस दिखाया है, उसमें बड़ा सा झूला है, खूब सारा ओपन ग्राउंड है आसपास। सो या गो एंड वॉच दिस पुरानी सीन्स पे आप श्रेया के साथ। एनसी सिप्पी साहब ने ये बंगलो दिया कब, क्यों और कैसे बच्चन साहब को, अभी बताऊंगी ये कहानी। कम राइट बैक।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

इस गाने की शूटिंग के दौरान ही मुझे लगता है कि बच्चन साहब ने सोच लिया था कि ये घर तो वो खरीद के रहेंगे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आपको जलसा, यस, उनका बंगलो अंदर से देखना है तो मैं शॉर्टकट बताती हूँ, ये वाला गाना देखना पड़ेगा। चुपके चुपके चल रही पुरवैया, ये जलसा के अंदर शूट हुआ है। अब पूरी कहानी बताती हूँ इस गाने की, इनफैक्ट जलसा की। सो होता ये है कि ये पूरा बंगलो जो है वो NCCP साहब का होता था, तब इसका नाम ना जलसा नहीं होता था। तो ये गाना जब शूट किया गया उसके बाद ना तभी सोच लिया था बच्चन साहब ने कि भाई वो ये बंगलो लेकर के रहेंगे। अब हुआ ये कि इसी दौरान NCCP साहब के बेटे की किडनैपिंग हो जाती है, एंड तब से उनको लगता है कि भाई घर बहुत बड़ा है, बंगलो बहुत बड़ा है, ही कुडंट टेक केयर एंड घर में लोग बहुत कम है, वो हमेशा से ये घर छोड़ना चाहते थे। इसी टाइम के दौरान उन्होंने फिल्म बनाई सत्ते पे सत्ता, जो कि ह्यूज हिट रही। हाँ, सो बच्चन साहब ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, आपको ये घर बंगलो वैसे ही नहीं पसंद है और मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, सत्ते पे सत्ता हिट भी हो गई है, तो एक काम करिए, आप मुझे बंगलो दे दीजिए और जो बाकी का पैसा बचेगा मेरी फीस का वो दे देना मुझे। NCCP साहब को ठीक भी लगा, उन्होंने ये बंगलो एज फीस सत्ते पे सत्ता के हिट होने के बाद बच्चन साहब को दे दी। यही बंगलो आज जलसा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हर संडे बाहर आते हैं और अपने फैंस से मिलते हैं, हाथ वेव करते हैं, ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन जी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, ऐसी बहुत सारी गप्पे होती है मेरे पास, तो बस वापस आओ।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राकेश दा का ना बिल्कुल अलग तरीका होता था अपने एक्टर्स को रिपोर्टिंग लेट के लिए पनिश करने का। पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ आज बात हो रही है फिल्म चुपके चुपके की, जिसमें थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया जी एंड अमिताभ बच्चन। सो धर्मपा जी ना हमेशा लेट होते थे सेट पे, तो पता है क्लाइमैक्स अगर तुम इस फिल्म का देखोगे तो उसमें दिखाते हैं कि धर्मेंद्र जी एक वॉशरूम से निकल रहे हैं एंड ही इज एडजस्टिंग हिज पैंट्स, वो अपनी पैंट्स को ठीक कर रहे हैं। अब ये सीन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऋषिकेश दा क्रिएटिवली पनिश करना चाहते थे धर्मेंद्र जी को फॉर ऑलवेज कमिंग लेट ऑन द सेट। अब धर्मेंद्र जी जो हमेशा अपनी मैचो इमेज के लिए, गुड लुकिंग फीचर्स के लिए नोन थे, ही वॉज पॉपुलर एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस कि वो हमेशा अच्छे दिखे, सोफेस्टिकेटेड दिखे, व्हाइट शर्ट में दिखे, उनको भाई अपने डायरेक्टर की बात माननी पड़ी। ये उनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट था कि वो अपनी पैन को ठीक ठाक करते हुए बाथरूम से निकल रहे, ये शूट लिया जाए। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: Car, presented by Virani Jewelers.
1: पिरानी रूरल्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार चल रहा है. अगली कंटेस्टेंट जो है वो मेरे साथ लाइन पर है. लेट्स फाइंड आउट हु दैट इज. हेलो.
2: हाय.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल.
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच. हैप्पी नवरात्रि टू यू.
2: सेम टू यू.
1: ऑलराइट शीतल, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ और उसका जवाब देने पर डिपेंड करेगा कि आप अगले राउंड में जाते हैं कि नहीं जाते. ऑलराइट, मेरा सवाल अगले राउंड के लिए आपसे है कि कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताइए.
2: सिटी ऑफ द ड्रीम्स, बॉम्बे.
1: बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई इज ऑल्सो द सिटी ऑफ ड्रीम्स इन इंडिया. थैंक यू सो मच शीतल फॉर पार्टिसिपेटिंग. कंग्रेचुलेशंस, आप अगले राउंड में पहुंच गए हैं.
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है.
5: एक ही होता है.
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.
7: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

उस टाइम पे ना हर डायरेक्टर का एक फोटे होता था, जैसे कि यश चोपड़ा साहब जो थे ना वो फॉरेन लोकेशंस दिखाते थे, जैसे गुरुदत्त साहब जनरली डार्कर साइड ऑफ लाइफ दिखाते थे, जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी उनकी फिल्मों में तो हमेशा आम आदमी होता था और वो कोशिश करते थे कि क्लाइमैक्स तक आते आते वो अपने ऑडियंस को ना कुछ लाइफ गिविंग लेसन दें। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। सो उस टाइम पे

बहुत रिलेट करोगे इससे. अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखो, और अगर देख लिए तो बार बार देखो. मूवी का नाम चुपके चुपके. पुरानी जीन्स पे ये किसका नाम है? मेरा, यानी आपकी प्यारी श्रेया का नाम. यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJ SHREYA with love.

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: With Mirchi, fresh maal.
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: आहार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में चल रहा है मिर्ची मॉर्निंग्स।

0: पता करते हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है। हेलो।
1: हाय प्रिसिला, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, दिस इज अनु।
0: हाय अनु, क्या चल रहा है नवरात्रि में?
1: कुछ नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है। आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 इयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन, डू सम डांसिंग विद देम।
0: ओह दैट्स सो क्यूट। तो चलिए जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको फटाफट से बिल्कुल क्विकली आंसर करना है।
1: श्योर।
0: टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, जल्दी से मुझे बताइए विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी?
1: जयपुर।
0: ऑलराइट, दैट्स द करेक्ट आंसर। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
2: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: है।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot
1: and अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज as a film review person कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन

0: कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Only on Mirchi, it's hot.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जो अलग बिहेव करे क्या जरूरी है कि उसके पीछे वैल्यूज भी हो? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ।
3: मेरा एक दोस्त है, वो लिव इन रिलेशनशिप में था और उसका ब्रेकअप इस वजह से हुआ क्योंकि उसके टॉयलेट्स को लेके ना बहुत बहुत सख्त नियम थे। तो मेरा दोस्त है, उसके नियम है कि भैया अगर आप मेरे घर आते हो तो आपको सबसे पहले, चाहे आप काम से आए हैं, बाजार से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, पहले आपको शावर लेना पड़ेगा। वो अपने गर्लफ्रेंड पे भी ये नियम, कोमोड जो है एकदम बिल्कुल सूखा होना चाहिए, तौलिया जो है अपनी जगह पे होना चाहिए, ये फिल्मों में आमतौर पर हम देखते थे। इसने एक्चुअली उसको अपने घर पे लागू किया। रिश्ता जब टूटने की कगार पे था तो हम सब ने उसे मिलकर कहा, भैया ये तुम बहुत अजीबो गरीब हरकत कर रहे हो, ये इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उसने अपने रिश्ते को बचाने के बजाय अपने टॉयलेट के हैबिट्स को के साथ रहना ज्यादा जरूरी समझा। और जब हमने पता करने की कोशिश की, बातचीत हुई, तो यह पता चला कि जब वो बड़ा हो रहा था ना तो उसके परिवार में बहुत सख्त तरह से फॉलो होता था, तो कहीं ना कहीं ये इसके दिमाग में ड्रिल इसके फैमिली ने कर दिया था। मेरा आपसे जो सवाल है कि वैल्यूज और एक्सेंट्रिसिटीज में ये जो फर्क करना है, ये हम कैसे समझें और कब समझें कि यहाँ रिश्ता ही टूट रहा है लेकिन वो इसी जिद में खड़ा हुआ है।
4: जो भी वैल्यूज होते हैं वो हमारे अपने लिए होने चाहिए। प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस वो तब क्रिएट करते हैं कि जो मुझे अपने लिए ठीक लगता है वो सब करने चाहिए। वहाँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर आप कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं। आप अगर कंट्रोलिंग नेचर के होंगे तो जो भी है आपके नजदीक वो सफोकेटेड फील करता है।
3: तो आप कह रहे हैं वैल्यूज जो है वो खुद के लिए होने चाहिए।
4: पहले तो ये एक वैल्यू सिस्टम भी अलग होता है, विच इज मोर डीपर। यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन है, आप सच बोलते हैं, उसको हम, ये एक तरीका होता है जीवन जीने का
3: बिल्कुल।
4: ये थोड़ा सा जिसको हम कहेंगे हैबिट्स, आदतें हैं हमारी,
3: आदतें हैं।
4: वैल्यूज अलग हो जाती हैं, डीपर होती हैं। उसके ऊपर चर्चा करना फिर भी जरूरी होता है क्योंकि वैल्यू सिस्टम में कई बार कॉम्प्रोमाइज नहीं भी होता। हम ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है मैं सच बोलूंगा, तुम झूठ बोलते हो तो बोलते रहो।
3: बिल्कुल,
4: वहाँ पर तो नहीं होगा। जो एथिक्स है, मोरालिटी है, कई बार हर बार सब्जेक्टिव नहीं होती, कई बार वो जरूरी होती है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं और टॉप लेयर की आदतें, आपकी अपब्रिंगिंग इस प्रकार से थी इसलिए ये आपकी आदत है, वो तो अलग ही होंगे। आप किसी तरह से जीवन जीते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को कंट्रोल करेंगे वो सफोकेट होगा तो वो रिश्ते के अंदर दरार तो लेकर आएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: लाइफ में बैलेंस क्यों सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: लेकिन कई बार क्या होता है कि क्योंकि आप जब बड़े हो रहे होते हैं, किसी किसी फैमिलीज में कुछ कुछ ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, आदतें, हैबिट्स, जिस तरह के आपने कहा, वो इतनी गहरी होती है, वो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, और आप में इतने गहराई से वो बैठ जाता है कि आपको लगता है यही जीवन जीने का तरीका है और यही सही रास्ता है, तो उसको बदलना बहुत कठिन होता है। तो हाउ डू यू डील विद दैट?
5: कठिन है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है।
4: नहीं, बिल्कुल नहीं।
5: पहली चीज, आप बदलना चाहते हैं कि नहीं, दैट इज वन। कई बार मुझे कम्फर्टेबल है, दूसरे को नहीं है।
4: नहीं,
5: इफ आई एम कम्फर्टेबल एंड अदर पर्सन इज कम्फर्टेबल कि मैं कर रहा हूँ, पर उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं है करने का, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है, मुझे कम्फर्टेबल है लेकिन दूसरे व्यक्ति को उससे तकलीफ है, तो भी अपने को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब आप रिश्ते में हैं तो आपको कहीं तो बैलेंस के साथ तो चलना पड़ेगा ना।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हैबिट और वैल्यू में अंतर क्या है और दोनों का रोल लाइफ में कैसे अलग होता है, आइए समझते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: दिक्कत यहाँ आती सिस्टर, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमारे दिमाग में डाल दिया गया होता है कि तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल हो लेकिन क्योंकि ये सही तरीका है यही करना पड़ेगा, तो उस समय हम हैबिट और वैल्यू में फर्क समझ नहीं पाते। तो अब उस इंसान को, अब बड़ा हो गया 25 या 35 साल की उम्र की बात है, तो उसको लगता है यही सही तरीका है, अगर ये नहीं करेंगे तो इंसान ही गंदा है, इंसान ही बेकार है।
6: में हम कंटिन्यूसली सीख रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और बदल रहे हैं, और वही जीवन है। अगर आप नहीं बदलते, आप समय के साथ चेंज नहीं होते, आप रिश्तों को समझ करके एडजस्ट नहीं करते, प्यार में कहते हैं ना थोड़ा बहुत त्याग करना, वो आपको मुश्किल नहीं लगता, उसमें मेहनत नहीं लगती, बिकॉज देर आर फ्यू थिंग्स यू विल डू क्योंकि उसमें उनका कम्फर्ट है, बट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, तो आपको वो चीज मुश्किल नहीं लगती। वो इसलिए कहते हैं कि प्यार में बलिहार जाना मुश्किल नहीं लगता, वारी जाना मुश्किल नहीं लगता। अब आप अगर रिजिड बने रहेंगे, दैट इज नॉट लाइफ। ऑल आई एम सेइंग इज क्या बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, इसमें मेरा क्या फायदा है, उसमें सामने वाले का क्या फायदा है। अगर उसमें कुछ फायदा है तो जरूरी नहीं है जो मैं कल था मुझे वो आज ही होना है। जरूरी तो ये कि मुझे आज और बेहतर बनना है, जिसमें मेरा भी ग्रोथ हो और सामने वाले को भी कंफर्टेबल हो।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Raj Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दूसरों से पहले खुद के साथ रिश्ता बेहतर कीजिए. कैसे? आइए जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: तो अब बात आती है जिस चीज से मैं वाकिफ रहा हूँ, सारे जीवन पला बड़ा हूँ उस एनवायरनमेंट में, वो जो हैबिट्स जिनको मैं वैल्यू समझ बैठा था उनको चेंज करने का. लेकिन कई बार इन वैल्यूज के खिलाफ जाना, इन नॉर्म्स के खिलाफ जाने में बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि सामने मेरा पूरा परिवार खड़ा है जिनको लगता है कि यही जीवन है भैया, अगर तुम इसका पालन कर सकते हो तो तुम करो, नहीं तो कोई बात नहीं, इस घर में रहने की जरूरत नहीं है. तो वो सम्मान की वजह से आदमी पीछे रह जाता है, चुप रह जाता है, या आपको लगता है साहस की कमी है उस वजह से कम रह जाता है. बिकॉज कहीं ना कहीं एक इंसान को लगता है कि ये गलत हो रहा है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी जीवन शैली अलग हो गई, अब मुझे कुछ तो इसके बारे में बोलना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा भाई ये जीवन ऐसे नहीं चलता.
4: अगर आपको गलत लग रहा है, ये चीज हम कई बार बार बार कहते हैं, वो करना होता है जो सही है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो, पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो सही है. अगर आपको लगता है कि सही है तो करना है. उसमें अगर कोई नाराज भी होता है, कोई अपसेट भी होता है, वो ठीक हो जाएगा. आप बात करें, कम्युनिकेट करें, उनको एक्सप्लेन करें. लेकिन अगर आप नहीं वो करते और गलत करते जाएंगे तो बाहर रिश्ता बना रहेगा पर अपने से रिश्ता टूट जाएगा ना.
3: सही बात.
4: हम सफोकेट होते जाते हैं. बाहर रिश्ता बनाने के लिए भी अपने साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है.
3: पहले हाँ, खुद से रिश्ता बनाए तो बाहर बनेगा.
4: आप अपने साथ तभी कंफर्टेबल होते हैं जब आपको कंफर्टेबल फील होता है कि नहीं, ये मुझे सही लगता है और मैं सही पर चल रहा हूँ. यू स्लीप वेल, यू लिव वेल, यू वेरी वेरी कम्फर्टेबल विद योर सेल्फ.
3: सही बात.
4: फिर हमारे अंदर उतनी हिम्मत आती है, हमारी आवाज में उतनी अथॉरिटी और अनुभूति होती है कि हम सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं या एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है. सो इट इज ऑलवेज फर्स्ट हैविंग अ रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, देन विद अदर्स.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फैमिली वैल्यूज हमारी थिंकिंग और डिसीजंस को कैसे शेप करती हैं, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपसे मैं अब एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछने जा रहा हूँ, शायद आपको लगे। कई बार मैंने देखा बहुत सारे परिवारों में जो फैमिली वैल्यूज के नाम पर बात आगे बढ़ाई जाती है वो एक कन्वीनियंट सिस्टम होता है जो उन्होंने बहुत सालों तक फॉलो किया है। सालों तो क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो किया है, जो उन्हें मिला वो उसको आगे बढ़ाते गए। अब कहीं ना कहीं लॉजिक उसमें से गायब हो गया, ये क्यों करते आए उनको नहीं पता, लेकिन अब आपको फॉलो करना है क्योंकि हमारे परिवार में यही फॉलो होता है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या ये फैमिली वैल्यूज जो हैं वो डर की वजह से चलाए जा रहे हैं या इनमें कोई एक्चुअली कारण है, या सिर्फ ताकि लोग भय में इनको फॉलो करें इसी वजह से किया जा रहा है? बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा देखने को मिलता है।
4: कुछ भी भय में तो करना नहीं चाहिए। हम भय में कोई चीज क्यों

0: करते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेडिशन है, आपके परिवार में कोई भी ट्रेडिशन है, आप अगर उसको फॉलो करना चाहते हैं तो समझ लीजिए। सिंपल ये भी एक ट्रेडिशन हो सकता है कि जैसे पहले होते थे, छोटे हैं घर के अगर बड़े हैं तो उनके पांव छूते थे, आज के बच्चे कहेंगे हम क्यों पांव छूए। या पहले ऐसा होता था कि अगर यंग लेडी है तो वो छू रही है, सबके पांव छू रही है, अब हम क्यों छू रहे हैं। एक सिंपल यही बात करें, छूना नहीं छूना वो अलग बात है, आप ट्रेडिशन फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये भी जरूरी नहीं है कि उस ट्रेडिशन से ही आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सबके पांव छूते हैं, पर जरूरी नहीं है हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट,
1: कोई रिस्पेक्ट हो, बिल्कुल।
0: और ये भी हो सकता है
1: कि नहीं छूते लेकिन बहुत रिस्पेक्ट है,
0: पर हमारे दिल में मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, पर वो एक रिस्पेक्ट का साइन था कि छोटे पांव छूते थे और बड़े उनको आशीर्वाद देते थे। तो ये ह्यूमिलिटी का साइन था, हम पैर छू रहे थे, क्या है ह्यूमिलिटी का साइन है, बाव डाउन करना और आशीर्वाद देना, माना उनके अंदर में शुभ भावना होती थी कि आप जो छोटे हैं वो सदा आगे बढ़ें, सफल हो, आपके जीवन में खुशी हो। अब दोनों तरह से वो भी आशीर्वाद देकर के कुछ बोल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो आशीर्वाद भी दिल से है। तो पहली चीज ये है कि फॉलो करे ना करे, दिल से वो चीज होनी चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट है और दिल से आशीर्वाद है। और दूसरा है कि अगर हम वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं समझ करके, उसमें कोई हर्जा नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि अगर उस ट्रेडिशन को फॉलो करने में किसी को थोड़ी सी खुशी मिलती है
1: तो क्या प्रॉब्लम है।
0: मैंने आपने उस ट्रेडिशन को समझा कि ये ह्यूमिलिटी का साइन है, आपने ये भी समझा कि इसमें बड़ों की दुआएं मिलती हैं, आपने ये भी समझा कि दुआएं हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं, असंभव को संभव करती हैं। आप समझ करके अगर वो कर्म करते हैं, और उसको करने में कितनी देर लगती है, 2 सेकंड,
1: बिल्कुल।
0: तो अगर 2 सेकंड के उस कर्म को हमने समझ करके किया, उसमें हमारा बेनिफिट है और किसी को उससे खुशी मिलती है, तो क्यों हम उसको इतना बड़ा इश्यू बना दें।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
6: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
5: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
8: वाओ, यही तो है मेरा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हर हैबिट के पीछे एक लॉजिक होता है, उसे समझना क्यों जरूरी है आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप सही कह रहे हैं कि अगर करने से किसी को खुशी मिलती है करने में क्या दिक्कत है। कभी कभी कुछ ऐसे करने को कहा जाता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि दाहिना पैर ही अंदर रखा करो, तुमने बायां पैर पहले घर में क्यों रखा। अब ये अगर मैं लेफ्टी हूँ तो मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं दिया जाता। कभी भी खाना अगर हो राइट हैंड से खाना है, लेफ्ट हैंड से नहीं खाना। और अगर आपने लेफ्ट हैंड में डाल के या अगर किसी खाने लेट से प्लेट में खाना परोसा हुआ है ऐसे लेके नहीं खाना, वो झूठा हो जाता पूरा प्लेट। और वहीं मैं देखता हूँ कि घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे लेके दूसरे हाथ में डाल के खा रहे हैं, तब वो झूठा नहीं होता। तो कभी कभी जो लॉजिक पे चलने वाला इंसान है, और अक्सर जब हम बड़े होते हैं सवाल करने की प्रक्रिया जारी होती है, हॉर्मोन्स हम पे हावी होते हैं, तो हम लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं। तो उस समय आपको लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं इनमें लॉजिक कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसलिए फॉलो करने बोला जा रहा है क्योंकि हम घर में छोटे हैं और बड़ों को इसका लॉजिक नहीं पता, वो भी अंधविश्वास में फॉलो कर रहे हैं।
4: नहीं, लॉजिक तो फाइंड आउट करना चाहिए। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि हमारे बहुत सारे ट्रेडिशंस के अंदर लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है, उसकी जब शुरुआत होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, और वो सिग्निफिकेंस भी हमारे भले के लिए ही होता है। आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने की जगह लॉजिक ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सच बात है कि जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती क्यों करनी
3: है, तब तक आदमी करता नहीं मन से,
4: बहुत मुश्किल लगती है वो चीज करना। चाहे वो मंदिर जाकर भगवान को याद करना ही है, या कोई दिया जलाना ही है, या वो राइट लेफ्ट हैंड की बात है, लेकिन जब वो समझ में आ जाता है तो वो हमारे को करना इजी हो जाता है। नाउ वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड,
3: मूव्ड अहेड, एब्सोल्युटली,
4: एंड नाउ उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वो करने की भी आवश्यकता नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
4: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
3: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
4: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
10: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
9: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
10: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
9: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एडजस्टमेंट कब स्ट्रेंथ होती है और कब सेल्फ लॉस, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मेरी मामी बहुत प्यारी बात कहती है कि कोई भी रिश्ता ना बना बनाए नहीं आता, और प्यार ना ये लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता। वो कहती है कि प्यार जो है वो पनपता है, को एग्जिस्टेंस है। जब साथ में आप रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, झगड़े होते हैं उनको आप पार करते हैं, तो आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो बहुत समय लगता है। तो मेरा ऑटोमेटिकली सवाल था कि भाई जब एक नया बंदा आता है आपकी फैमिली में, एक नया रिश्ता कायम करता है, तो फिर उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नया होता है, क्योंकि आपको ये सब देखना पड़ेगा, को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी आपको बहुत लंबी जर्नी में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए तो ये जो एडजस्टमेंट है या कॉम्प्रोमाइज है या जो भी है, ये करने में थोड़ा समय लगेगा। तो एक नए बंदे के लिए इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, अगर आप पेशेंट नहीं है तो।
4: नहीं, ऐसा नहीं है। सी, मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट इट इज। कई बार जर्नी बहुत इजी होती है, पर आपको जर्नी का पता ही नहीं होता ना। एक ऐसी, अगर आपको पहले से पता होता है कि दो जने हैं और डिफरेंट होंगे और हमें एक्सेप्ट करना है, कहीं फॉरगिव करना है, कहीं लेट गो करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना है, आपको पता होता है, क्लैरिटी होती है कि ये करना है, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। पर इन मोस्ट केसेस में आपको पता ही नहीं होता, आप उल्टा चल रहे होते हो,
3: कोई बताता भी नहीं है ना,
4: इसलिए

0: कई बार कहते हैं ना, IQ बहुत है, इंटेलिजेंट है, मॉडर्न एजुकेशन है, ये वाली जो एजुकेशन है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, ये आती है आध्यात्मिकता से। एक आधुनिक पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई है। आध्यात्मिक पढ़ाई में क्या होता है, आप खुद को समझते हो। एक बार आपने अपने को समझ लिया, आप सबको समझ जाते हो। वी नॉट वेरी डिफरेंट। जो बात मुझे दुख देती है, वो बात आपको भी दुख देगी। जो बात मुझे परेशान करती है, वो आपको भी परेशान करेगी। फिर मुझे पता है कि मुझे इस समय पर क्या चाहिए। मैं दर्द में हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई चाहिए जो मेरे से प्यार से बात करे, एम्पावर करे, एक्सेप्ट करे। तो जब आप दर्द में, तो मुझे समझ में आ जाता है, उस समय मुझे आपका दर्द दिखाई देता है, एंड आई नो हाउ टू हील यू। बट वी डोंट स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, एंड दैट इज वाई दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
0: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
3: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Wow, yahi to hai mera dream. Stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
1: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: Type C cable ke saath phone to charge kar loge. खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सिस्टम को बदलने के लिए उसका हिस्सा बनना क्यों जरूरी होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: पेज 3 फिल्म आई थी, उसमें बहुत खूबसूरत लाइन है, कोंकणा सेन शर्मा ना परेशान होकर छोड़ देती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होती है, तो उसमें अतुल कुलकर्णी एक जो रोल प्ले करते हैं वो उसे कहते हैं कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा। सिस्टम के अंदर रह के आप सिस्टम को चेंज कर सकते हो, अगर आप सिस्टम के बाहर आ गए तो आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आप भी वही बात कह रही हैं कि आप जब तक उस सफर से गुजरेंगे नहीं, जब तक आप वो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली क्या है ये रिश्ता। सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम टू चेंज इट।
4: हम किनारा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इजियर ऑप्शन है। पर हम किनारा किससे कर रहे होते हैं कि हम हर्ट नहीं हो, हम उससे किनारा कर रहे होते हैं। लगता है हम व्यक्ति से किनारा कर रहे हैं,
3: हाँ, लेकिन
4: पर हम किनारा किससे कर रहे होते हैं? आई डोंट वॉन्ट टू गेट हर्ट अगेन,
3: राइट?
4: सो आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ बाय ब्लॉकिंग एवरीबडी इन माई लाइफ। दूर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, दूर रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। बट अगेन रिश्तों में अगर एडजस्टमेंट है तो उसमें और भी तो बहुत कुछ है ना, सपोर्ट भी है,
3: बिल्कुल है, लव है, केयर है, शेल्टर है, बहुत कुछ है,
4: सिक्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टेंस है, बहुत कुछ है।

0: और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: देखो लाइफ ना एक समोसे की तरह होती है, बाहर से क्रिस्पी होती है और अंदर से एक्स्ट्रा मंडे का तीखा तड़का लगाकर थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर कॉफी से पहले गर्मा गर्म बातें होती है और वो बातें ना थेरेपी का काम करती है। अच्छा ये सुनो, नवरात्रि का सीजन शुरू हो चुका है, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, 9 nights, ढेर सारा लक और ढेर सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, ये सब के बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगी। अभी तो शो शुरू ही हुआ है, मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी एक कॉन्टेस्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। उसके लिए थोड़ा सा होल्ड ऑन, मिर्ची दार गाने वाने सुनो, मुझे जाकर फॉलो करो, मुझसे बातें करो और मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: 18th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
1: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
4: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
1: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
1: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
8: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
9: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
10: 2108069।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22-carat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
14: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. To grab this offer, conditions apply.
15: Tera kya hoga, Kalya?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज की डेट में हिस्ट्री में क्या हुआ था पता करने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले 539 BC में पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट की आर्मी ने बेबीलोन कैप्चर किया था। एंड 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की एक्सपेडिशन कैरेबियन पहुंची। हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज लेट्स जस्ट से द नेटिव अमेरिकन्स वरंट एग्जैक्टली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। फास्ट फॉरवर्ड टू 1964, सोवियत यूनियन ने वॉस्कॉट 1 लॉन्च किया, स्पेस में पहली मल्टी पर्सन क्रू गई थी। 1967 में इंडिया ने अपना सोशलिस्ट लीडर और फ्रीडम फाइटर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को खो दिया था। एंड द ईयर 2000 में यूएसएस कोल पर यमन के एडन पोर्ट में टेररिस्ट अटैक हुआ, किलिंग 17 अमेरिकन सेलर्स। 2002 में बाली बॉम्बिंग्स किल्ड 202 पीपल, एंड वी रिमेम्बर द विक्टिम्स फॉर दीज ट्रेजिक अटैक्स। फाइनली 2007 में अलगोर और यूएन क्लाइमेट पैनल को नोबेल पीस प्राइज मिला। प्लैनेट को बचाने की बात तो खैर अब भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, मुझे सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर, एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। ड्रॉप मी अ हाय देयर एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड

0: done. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
7: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
8: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
7: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
10: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
5: ऑन Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
12: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
15: ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
17: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
18: Listener mein back to back gana sunega.
19: Back to back gana sunega.
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
9: 2108069। सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख की विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट VIRANIJewelers.com।
12: Honey, it's 11 PM, our bedtime. Where are you?
13: I am not going to bed with you ever again.
12: But why? What did I do?
13: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
12: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
13: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
12: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
13: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
14: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
15: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
16: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से

0: हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
1: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी फिलहाल टेम्परेचर है 54 डिग्री फारेनहाइट, हल्की सी बारिश और नॉर्थ विंड से 9 माइल्स पर आवर की हवा चल रही है। मतलब कि बाहर निकलोगे तो मौसम कहेगा ठंड का है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुबह के स्काई जो है वो थोड़े से क्लाउडी रहने वाले हैं, फिर 10 से लेकर 2 बजे के बीच में सनशाइन की एंट्री होने वाली है एकदम कैमियो की तरह। फिर 10 से लेकर 2 के बीच में सनशाइन की एंट्री होगी उस हीरो की तरह जिसका कैमियो होता है एकदम स्लो मोशन में। आफ्टरनून में हाई जाएगा 73 से लेकर 74 डिग्री फारेनहाइट के बीच में, तो लेयर के प्लेयर बनकर निकलना आज जरूरी है, बिकॉज आज जो है न्यू जर्सी का वेदर वो देसी रिश्तेदार की तरह है, कभी भी मूड चेंज कर सकता है। रात को स्काईज मोस्टली क्लियर रहने वाले हैं विद टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग टू अराउंड 54 डिग्री फारेनहाइट, लेकिन गुड न्यूज ये है कि पिछले 24 घंटों में 37 मिलीमीटर्स की बरसात जो हुई है उसका असर अगले 24 आवर्स में नहीं है, बिकॉज देयर इज जीरो रेन एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। कल का हाई था 61 डिग्री फारेनहाइट एंड टुडे इट्स गोना बी नोटिसेबली वार्मर। तो बाहर निकलोगे एसपीएफ 50 प्लस लगाकर ही जाना। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, मिर्ची का वाइब बनाकर रखो अपने साथ में। आई गॉट अ कॉन्टेस्ट फॉर यू टुडे जिसको थोड़ी सी देर बाद लेकर आऊंगी मैं, अभी फिलहाल तुम जाओ मेरा सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647255।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब तीन अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोरान ममदानी और एनवाईपीडी कमिश्नर जेसिका टिश के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 के फर्स्ट 9 मंथ्स में मेजर क्राइम 6.6% डाउन हुआ है अक्रॉस ऑल 5 बरोज। दैट्स ओवर 6,000 फ्यूअर रिपोर्टेड मेजर क्राइम्स कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और सबसे सिग्निफिकेंट मर्डर्स, शूटिंग इंसिडेंट एंड शूटिंग विक्टिम्स तीनों के नंबर्स जनवरी से सितंबर तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे लो रहे हैं। द ब्रॉन्क्स सॉ द biggest drop in major crime down by nearly 12% and public housing maybe shootings and robberies declined. Number two पर रशिया एंड यूक्रेन का सीज़फ़ायर। डोनाल्ड ट्रंप सेज़ दोनों कंट्रीज अग्रीड टू स्टॉप अटैकिंग ईच अदर्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन होल्ड ऑन, यूक्रेन्स प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सेड द अनाउंसमेंट वाज न्यूज़ टू हिम एंड अटैक्स वर स्टिल बीइंग रिपोर्टेड। तो अग्रीमेंट है, अनाउंसमेंट है या फिर ग्राउंड रियलिटी है, ये अभी स्टिल डेवलपिंग स्टोरी है। एंड लास्टली स्पोर्ट्स से, इंडिया अभिषेक शर्मा जस्ट स्मैश्ड बीटिंग सूर्य कुमार यादव एके स्काईज रिकॉर्ड। एंड दैट्स योर मिर्ची आवर के थ्री, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फॉलो करो मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप 9033647244 पर। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Nel cine Iscabana, uscabana, sacabana Rabana Burga, burga La vedva la burga
1: हेलो।
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूँ जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
1: मैं हेलो?
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन? तू ये बता
2: ना इसे। ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गाँव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो इस दिवाली।

0: खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store. Best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Inefficient.
16: Very complex.
17: Clumsy.
18: Confusion ही confusion.
19: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One. Right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक. Software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
20: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
21: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
20: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
21: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
20: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
22: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
23: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
24: अरे कहना क्या चाहते हो?
23: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
25: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
26: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
25: फिल्मों में विलन को धोत पर बच्चन एक ही होता है।
27: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं डालकर ही खोलूंगा।
25: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
28: एक ही होता है।
25: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग. जो नवरात्रि में माता का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, बट वॉट इफ तुम्हारे ऊपर लक का थोड़ा सा आशीर्वाद बरसने लग जाए. वीरानी ज्वेलर्स लेकर आए हैं 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू विन 9 गोल्ड चेन्स ओनली ऑन मिर्ची. यस, लकी विनर्स जीत सकते हैं गॉर्जियस गोल्ड चेन्स, क्योंकि मिर्ची 9 लक का हार चल रहा है. ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स. और पार्टिसिपेट करना है, काफी सिंपल सा काम करना है. सबसे पहले व्हाट्सएप खोलो, नवरात्रि टाइप करो, 9033 मिर्ची पर भेजो, यानी कि 9033647244, या फिर डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है MIRCHIPRIS, दैट्स मिर्ची प्रिस. नवरात्रि टाइप करो, अपना नाम और फोन नंबर दोनों लिखकर मुझे भेज दो इंस्टाग्राम पर, एंड देन वेट फॉर माय कॉल. एंड क्योंकि फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, शॉपिंग का मूड भी होगा तुम्हारा, वीरानी ज्वेलर्स ओक ट्री रोड पर विजिट करना बनता है, क्योंकि वहां पर स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं

टू कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। और ज्यादा डिटेल्स के लिए वीरानी ज्वेलर्स डॉट कॉम पर जाकर चेकआउट करो और इस नवरात्रि को अपने घर ढेर सारा लक और माता रानी की कृपा लेकर आओ। अभी के लिए मिर्ची दार बैंगर्स से काम चलाओ। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: वीरानी रूलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौलक का हार चल रहा है. अगली कंटेस्टेंट जो है वो मेरे साथ लाइन पर है. लेट्स फाइंड आउट हु दैट इज. हेलो.
2: हाय.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल.
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, थैंक यू सो मच. हैप्पी नवरात्रि टू यू.
2: सेम टू यू.
1: ऑलराइट शीतल, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ और उसका जवाब देने पर डिपेंड करेगा कि आप अगले राउंड में जाते हैं कि नहीं जाते. ऑलराइट, मेरा सवाल अगले राउंड के लिए आपसे है कि कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताइए.
2: सिटी ऑफ द ड्रीम्स, बॉम्बे.
1: बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई इज ऑल्सो द सिटी ऑफ ड्रीम्स इन इंडिया. थैंक यू सो मच शीतल फॉर पार्टिसिपेटिंग. कंग्रेचुलेशंस, आप अगले राउंड में पहुंच गए हैं.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
8: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: This festive season, Kalal of New Jersey presents 2 mesmerizing nights.
12: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
11: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalol.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
13: चुराने का

0: जरूरत नहीं। मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
0: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
3: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
4: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
2: मैत्री ब्रिंग्स यू थाक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
5: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org.
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
7: Tera kya hoga, Kalya?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो केक तो काटोगे ही, लेकिन इमेजिन शेयरिंग योर हैप्पी वाला बर्थडे विद द वुल्वरीन हिमसेल्फ। यस, आज के सेलेब लिस्ट में किस किस के नाम है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले वी हैव ह्यू जैकमैन, हु यूज्ड टू प्ले वुल्वरीन, अभी भी शायद वही प्ले करने वाले हैं, हु नोज, ही इज टर्निंग 58 टुडे। देन वी हैव गॉट हंगर गेम्स से जॉर्ज हचसन, ही टर्न्स 34 टुडे। एंड देन वी हैव गॉट शोगन के ब्रिलियंट हीरोयुकी सनादा, हु टर्न्स 66 टुडे। साथ में आज है बर्थडे द लेजेंडरी ओपेरा सिंगर लुशियानो पावरोटी का। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन, फेस्टिव सीजन चल रहा है और मिर्ची पर कैसे ना जीतो तुम गोल्ड की चेन, कैसी वीरानी ज्वेलर्स, क्योंकि मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 रातों को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन गॉर्जियस गॉर्जियस गोल्ड चेन्स ऑफकोर्स फ्रॉम वीरानी ज्वेलर्स। काम सिंपल सा करना है, व्हाट्सएप खोलना है, नवरात्रि टाइप करना है, अपने पूरे नाम के साथ भेज देना है 9033 मिर्ची पर राइट नाउ। 9033647244 इज माई व्हाट्सएप नंबर। साथ साथ में तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। टाइप करो नवरात्रि, साथ में अपना पूरा नाम और नंबर लिखो, एंड देन जस्ट वेट फॉर माई कॉल एंड मे बी यू कुड बी द नेक्स्ट लकी विनर ऑफ मिर्ची 9 लाख का हार। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
3: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
2: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
3: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलन।
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं। पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं। फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रसमलाई का चलन शुरू करते हैं। रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
9: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
10: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
11: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा। पिकर आया है मिटीज, हर दिन जीत सकते हैं वन प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
14: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
17: Tera kya hoga, Kalya?
18: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
17: Ab mirchi kha.
19: Radio Mirchi. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब टाइम है गोल्ड रेट अपडेट का ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: RajJewels.com विशेस हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,280 $4,280 पर ट्रेंड के साथ इस गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं RajJewels.com पे, जहां पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड के थोड़े से रिड्यूस प्राइजेस का बेनिफिट ले सकते हैं और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुना तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ। बने रहो इंस्टा और एक्स पर भी। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय RajJewels, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट style.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello, hello. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. Time for updates from around the world. सबसे पहले खबर इंडिया से. दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट की लिस्ट से हटा दिया है. अब अल्टरनेटिव्स हैं रामलीला ग्राउंड, बुरारी ग्राउंड एंड सीबीडी ग्राउंड. जंतर मंतर 1993 से प्रोटेस्ट का मेजर वेन्यू रहा है. क्रिटिक्स आर क्वेश्चनिंग व्हाट दिस मींस फॉर सिटीजन्स राइट टू प्रोटेस्ट. नंबर टू पर सैफ अली खान ज्वाइंस इंस्टाग्राम.

छोटे नवाब साहब इज फाइनली ऑनलाइन. सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम डेब्यू किया है और फर्स्ट पोस्ट का कैप्शन है द पटौदी लाइब्रेरी जजिंग बुक्स बाय देयर कवर. वाह साहब, रॉयल एंट्री तो मार ली उन्होंने, लिटरली कैप्शन भी रॉयल था. एंड द फर्स्ट फॉलोअर्स वाइफ करीना कपूर, मतलब कि सोशल मीडिया पर भी बेगम फर्स्ट, बाकी सारा जहां बाद में. एंड फाइनली क्रिकेट से इंडिया ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 223 ऑल आउट स्कोर डिफेंड करके मैच 14 रन से जीत लिया है. वेस्ट इंडीज मैनेज्ड 209 for 7 and India now leads the 5 match series 2-1. भाई इतने रन्स तो हम ग्रुप चैट में भी नहीं बना पाते यार. And that's it for your Mirchi Hour ke 3. मेरा हैंडल नेम है Mirchi Pris on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp का नंबर 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wird wala burga. Milci, burga.
1: Hallo.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप। क्या हो गई तो भाई, अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूनियन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ
2: ठीक है मैं निकलवा लूंगा, ठीक है। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत
1: भाई। किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, कहाँ पे भी जाना है,
2: मैं देखता हूँ मेरा यूनियन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले,
2: ठीक है भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RawJewels.com.
4: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
5: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
4: Wait, they can see us on Sunday?
5: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
9: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
10: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग

0: your closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
1: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
1: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
3: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शकीने चाहिए टिकटे चाहे होने देना शोको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हॉट स्टार्स तुम्हें क्या इशारा करना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ मैंने आप गॉट विद मी राशि जोन का पहला पार्ट।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, बिजनेस में कॉन्फिडेंस रखो, रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर बात को बैटल फील्ड बनाना जरूरी नहीं है। आज लकी कलर है टील, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पेंडिंग बिल्स और टू डू लिस्ट को पहले निपटाओ, अडल्टिंग का असली ग्लो अप तभी आएगा। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 4।

गेमिनी यानी मिथुन राशि, चार्म ऑन, कम्युनिकेशन क्लियर, स्पेंडिंग अंडर कंट्रोल, क्रेडिट कार्ड को भी आप थोड़ा सा मेडिटेशन करने का मौका दो, लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, रिलेशनशिप्स में वार्म्थ बढ़ने वाली है, बस टेम्पर एंड टायर्डनेस को मैनेज करो, हर मूड को मोनोलॉग मत बनाओ यार, लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 8। लियो यानी कि सिंह राशि, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी, रॉयल ट्रीटमेंट चाहिए तो पहले रॉयल कम्युनिकेशन करना सीखो, लकी कलर is emerald, lucky number is 13। वर्गो यानी कन्या राशि, माइंड शार्प है, फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, करियर और फाइनेंसेस प्लान करने का परफेक्ट टाइम है, स्प्रेडशीट्स भी आज तुमको सलूट करेगी, लकी कलर इज मस्टर्ड येलो, लकी नंबर इज 26। एंड दैट्स योर राशि जोन का पहला पार्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। मिर्ची देयर बैंगर्स कमिंग up, stay tuned and stay hot.

0: नाम क्या है? हेलो,
1: हाय, माय नेम इज यास्मिन.
0: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम.
1: थैंक यू.
0: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है?
1: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम. सो या, एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन.
0: ओह, दैट्स स्वीट. सो इंडिया में कहां से हुआ?
1: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे.
0: बॉम्बे, ऑलराइट. तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है. बिगाड़ी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हाई कॉन्फ्रेंस चल रहा है. मेरा सवाल यास्मिन से यह है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए.
1: द गंगा रिवर.
0: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशन. और आप अगले राउंड में मूव करती हैं.
2: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.

0: collector's offer. Conditions apply.
1: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो. राजभोग wishes you and your family a very happy Navratri. राजभोग will sweeten your festive celebrations. For orders, visit rajbhog.com या अपने local grocery store से अपनाइए राजभोग को.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
7: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
8: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
7: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
8: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
7: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
0: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: Listener MA, back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. यूनिवर्स तुमसे कुछ कहना चाहता है राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज योर चार्म इज डूइंग ओवर टाइम. पुरानी डिसएग्रीमेंट्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हो. बस लोअर बैक फटीग को थोड़ा सा इग्नोर मत करना. लकी कलर इज रोज पिंक. लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, थोड़ा सा इमोशनल डीक्लटरिंग भी जरूरी है. हर बात इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है. लकी कलर इज इंडिगो. लकी नंबर इज 29. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, फ्रेंड्स और नेटवर्किंग से करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. ग्रुप को सिर्फ मीम्स के लिए मत यूज करो. लकी कलर है सैफ्रन. लकी नंबर है 6. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कॉन्फिडेंस हाई है, सोशल वाइब्स जो है काफी हार्मोनियस रहने वाली है. आज अपने अचीवमेंट्स को है ओन करो, हम्बल रहना है लेकिन इनविजिबल नहीं. लकी कलर है चारकोल ग्रे. लकी नंबर है 24. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, रेस्टलेस फील कर रहे हो, दिल की बात क्लियरली बोलो. पीपल माइंड रीडर नहीं होते हैं, इवन इफ दे लीव यू ऑन रेड. लकी कलर है टर्कोइज. लकी नंबर है 15. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि मीन राशि, रिलेशनशिप्स में पेशेंस रखो, एम्पथी से टेंशन कम होती है. हर डिसएग्रीमेंट को सीजन फिनाले मत बनाओ. लकी कलर इज पीच. लकी नंबर इज 3. एंड दैट्स योर कॉस्ट राशि जोन पार्ट 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस। आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also, enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
9: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और इस नवरात्रि माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ अगर घर में तुम्हारे सोना आ जाए तो क्या कह रहे हैं। दिस इज प्रिसिला विथ यू। मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप टाइम चल रहा है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें याद दिला दूं, नवरात्रि की 9 रातों को 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल रही है। मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स जीत सकते हैं, क्योंकि मिर्ची 9 लक का हार चल रहा है, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। और पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, व्हाट्सएप पर भेजो नवरात्रि और अपना पूरा नाम 9033647244 पर, या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, वहां पर लिखकर भेजो नवरात्रि, अपना पूरा नाम, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी, एंड देन जस्ट वेट फॉर माय कॉल, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्टेस्ट खेलने वाली हूँ और हो सकते हैं अगले लकी विनर मिर्ची 9 लक का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स तुम ही हो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, जल्दी जल्दी अपना लक आजमाओ, रजिस्टर करो, एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम मी। यू हैव अ ग्रेट मंडे एंड अ ग्रेट डे अहेड। मिलूंगी तुमसे कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर, स्टे ट्यून्ड, stay hot.

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: कुछ शो सिर्फ शोज नहीं होते, वो पूरी जनरेशन की मेमोरी बन जाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और करण जौहर के अल्टीमेट काउच पे एकदम मस्त वाली कॉफी पीते हुए जो सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस हुए हैं इन द शो कॉफी विद करण इज वन ऑफ देम। 2004 में शुरू हुआ था ये शो और देखते ही देखते 8 सीजन्स, 22 साल और 161 एपिसोड्स का सफर तय कर गया, जहां करण जौहर के काउच पर सेलिब्रिटीज आए, कॉफी के साथ कन्फेशंस हुए, रैपिड फायर राउंड्स में सीक्रेट्स निकले और कुछ ऐसे मोमेंट्स मिले जो लिटरली पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। और अब जब करण जौहर ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीजन 8 इज गोइंग टू बी द लास्ट ब्रू ऑफ द शो, तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि यार हमारी जनरेशन ने ना इस शो पे सिर्फ सेलिब्रिटीज को कॉफी पे बात करते हुए नहीं देखा, हमने उनकी पर्सनालिटीज, उनकी फ्रेंडशिप्स, कंट्रोवर्सीज और वल्नरेबिलिटीज को भी उस काउच पर अनफोल्ड होते देखा है। 22 सालों तक कॉफी विद करण ने बॉलीवुड को सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, उस कहानी का एक हिस्सा बन गया। और शायद इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड सिर्फ एक शो का फिनाले नहीं, एक एरा का गुड बाय लगेगा। वैसे ऑलरेडी इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड 14th ऑफ अक्टूबर से इट इज गोना स्ट्रीम ऑन जियो हॉटस्टार, जब करण जौहर की ये वाली लेगेसी विल कम टू एन एंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virtual murga. Mirchi, murga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट।
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
1: आसपास कोई भी नहीं है।
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है। हिल नहीं रहे।
1: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है।
1: हरा काट के देख धीरे से।
2: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशंस।
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है।
2: हाँ।
1: मैं इसी को पूछा फिर तूने?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
9: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स। दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस नाउ। वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
8: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
9: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंड areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट

0: साइंटिस्ट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
1: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
0: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देख के पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
1: Paid for by Desi Blue, desiblue.org, not authorized by any candidate or candidates committee.
2: खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
5: ओह नो!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हां जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूं, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहां अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर बाजारों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
1: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेजेस हमेशा आपके साथ है.
2: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
1: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
10: नवरात एकत स्पिरिट
11: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्का टवे मा
10: रमो गरबा डेली 11-19 October सांची 7 o'clock थी.
11: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ 19 9 यज्ञ 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी. विजिट gayatricenter.org टुडे.
12: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
13: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
12: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.

0: बोलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, लगाम लगाइए उसको, जरा पॉइंट पे आइए। बेसिकली यहाँ पे आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राजा जी। हेलो सर, कैसे हैं आप?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ, अब आपसे बात करके और
0: अच्छा। ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ चलिए और अच्छा करते हैं आपकी वाइब को। जजंतरम अमंतरम के लीड एक्टर कौन थे?
3: जावेद जाफरी।
0: जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
3: धमाल।
0: क्या बात। धमाल में मानव का भाई कौन है?
3: मानव का भाई अरशद वारसी।
0: क्या बात। अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का, मतलब करने का ये बोलते हैं?
3: मुन्ना भाई।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
3: खलनायक।
0: गाना याद किया था ना?

0: वही पहले वही आता है।
1: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
0: माधुरी दीक्षित।
1: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
0: ये जवानी है दीवानी।
1: ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
0: कल की मुस्लिम।
1: ओके, पता है। कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
0: बैग का नाम बैगवती होता है। मुझे मूवी याद नहीं आ रही।
1: कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और आपको बनाएंगे हमारे आज के पहले।
2: मिर्ची फिल्मची।
0: थैंक यू श्रुति।
1: तो भाई, अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल कि मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपना नंबर भेजना होगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
4: मैत्री ब्रिंग्स यू थाक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
5: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
6: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: कर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
6: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
7: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
9: Yeah, meethi mirchi, brighten up your day, we will find a way. On meethi mirchi, aha.
10: खेलो मगर प्यार से।
11: श्रुति श्रुति
12: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
10: मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने रजत जी से शुरू किया था, बट ही गॉट स्टक एट पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है राहुल। तैयार है आप?
13: जी जी जी।
10: ओके, सो रजत इस सवाल पे अटके थे कि कल्की की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है।
13: ZNMD
10: में पिंक फोन कौन चलाता है?
13: ऋतिक रोशन।
10: लड्डू रायचंद किस फिल्म में बने हैं?
13: कभी खुशी कभी गम।
10: काफी म्यूजिकल हैं आप। कभी खुशी कभी गम में कह दिया, बस कह दिया कौन बोलता है?
13: अमिताभ जी।
10: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सड़ू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?
13: मोहब्बतें
10: में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
13: ऐश्वर्या राय।
10: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो हॉट शायरा बनी है?
13: ए दिल है मुश्किल।
10: ए दिल है मुश्किल में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
13: रणबीर कपूर।

0: रणबीर कपूर किस फिल्म में पापा पगलू बने हैं?
1: कौन से बने हैं?
0: पापा पगलू
1: एनिमल।
0: एनिमल में अबरार कौन है?
1: कौन है? बॉबी देओल।
0: बॉबी देओल की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग की बात होती है?
1: वाइफ स्वॉपिंग। अजनबी।
0: क्या बात, अजनबी में बॉबी की वाइफ कौन है?
1: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की किस फिल्म में रोबोट्स हैं?
1: रावण।
0: हाँ जी, रावण में गेम डिजाइनर कौन है?
1: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान कैदी नंबर 786 किस फिल्म में बने हैं?
1: वीर ज़ारा।
0: वीर ज़ारा में उनके डिफेंस लॉयर कौन है?
1: रानी मुखर्जी।
0: रानी मुखर्जी की किस फिल्म में उनके हस्बैंड रेसर होते हैं?
1: तारा रम पम
0: आपने भी गेम एकदम तारा रम पम खेला है। तो चलिए आपको भी डिक्लेयर करते हैं हमारे आज के दूसरे
2: मिर्ची फिल्म ची।
0: बाकी अगर आप में से कोई इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डीएम करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भाई एक्सट्रीम्स के अलावा भी एक जोन होता है
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत कम फिल्मों ने एक्सप्लोर किया है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और हम बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखते आए हैं, राइट? या तो वो बहुत बेचारी सी है या फिर इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन है कि भाई उसमें कोई वीकनेस ही नहीं है। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जहां विमेन को सिर्फ इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें इंसान बनाया गया। वो करियर को लेकर कंफ्यूज हो सकती हैं, घर से इरिटेटेड हो सकती हैं, गलत डिसीजंस ले सकती हैं, रिलेशनशिप्स में मेस कर सकती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर सकती हैं, या बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट साल 2015 में आई फिल्म पीकू से पीकू के किरदार के बारे में। नंबर दो पे वील टॉक अबाउट साल 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। नंबर तीन पे हम बात करेंगे 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में। नंबर चार पे साल 2024 में आई फिल्म लापता लेडीज से दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। और नंबर पांच पे साल 2025 में आई फिल्म मिसेस से सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर रिचा के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद पीकू, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार और इसे लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। एंड यू नो, ये फिल्म शायद उन रेयर फिल्मों में से है जहां एक वुमन की लाइफ को किसी लव स्टोरी के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया है। पीकू एक आर्किटेक्ट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रिलेशनशिप्स हैं उसकी लाइफ में, एसईएक्स और मैरिज को लेकर उसके अपने ओपिनियंस हैं, और साथ में एक ऐसे फादर हैं जो लिटरली उसके पेशेंस का डेली टेस्ट लेते हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार और राइटर जूही चतुर्वेदी ने पीकू को आइडियल डॉटर बनाने की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स इरिटेबल, समटाइम्स सेल्फिश बट डीपली लविंग वुमन बनाया है। एंड दीपिका पादुकोण एज पीकू ग्लैमरस हीरोइन कम एक रियल दिल्ली वुमन ज्यादा लगती है। वेल, ऐसे ही बाकी के चार और कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगी, बट इन अ वाइल अभी के लिए एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

0: Mirchi. Iskaba la puskaba na sakaba na. Burga, burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi burga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैंने क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिला?

0: जिससे तुम्हें बात करनी है, मैं वो नहीं हूँ।
1: अग्रेशन,
0: कौन हो तुम मेरे?
1: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
0: अबे तू है कौन, तू ये बता।
1: ना ये है 9th level, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
0: ऐसा है, अपनी गोली डाल दे तू अपनी गांव में, ठीक है?
1: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा, आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
0: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
1: ओह माय गॉड, लेवल 15, वो सबके
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlboro. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
5: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
6: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
7: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
11: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 lucky winners को मिलेगा 9 gold chains।
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती
11: हैं, क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 luck का हार। 9 navratri nights, 9 golden opportunities, हर दिन जीत सकते हैं 1 precious gold chain। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट VIRANIJewelers.com।

0: एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया उनके फ्लॉ। द लिस्ट, सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में, अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। सो ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला हैं, जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती हैं, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट, इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहाँ काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है देन प्लीज पुट इट इन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents Mirchi Nola ka haar chal raha hai. Agli contestant jo hai wo mere saath line par hai. Let's find out who that is. Hello.
2: Hi.
1: Hi, what's your name?
2: Sheetal.
1: Hi Sheetal, how are you?
2: Good. How are you?
1: Hi, I'm good. Thank you so much. Happy Navratri to you.
2: Same to you.
1: Alright, Sheetal, main aapse ek sawal poochne wali hu aur uska jawab dene par depend karega ki aap agle round mein jaate hain ki nahi jaate. Alright, mera sawal agle round ke liye aapse hai कि कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है. फटाफट से आंसर बताइए.
2: सिटी ऑफ द ड्रीम्स बॉम्बे.
1: बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर. एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई इज ऑल्सो द सिटी ऑफ ड्रीम्स इन इंडिया. थैंक यू सो मच शीतल फॉर पार्टिसिपेटिंग. कंग्रेचुलेशंस, आप अगले राउंड में पहुंच गए हैं.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
0: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है.
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस.
0: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा. विजिट aimseducation.edu. योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स.
4: सोना खरीदने के

0: यादव बेचारी
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। बड़ाश पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को। अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स है उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सरफेस लेवल पे देखोगे तो आपको दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं फूल और जया, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ निगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है, जहां फूल का इनोसेंस और जया के एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। Yes, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। एंड नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट मिसेस। ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सान्या मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है। शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन, एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने ऋचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली एक्साइटेड अबाउट मैरिज।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: दोस्त, अगर जिंदगी के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हां जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूं, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहां अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया. तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है. पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड. तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वॉज इन्वाइटेड. एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्म है, उनसे अलग है, तो लोग आकर के ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है. लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. नोबडी वॉकड अप टू हिम एंड कंग्रेचुलेटेड हिम. एंड दिस क्या हो गया है? ऐसा क्यों? लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई, स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग. फिर क्या हुआ? गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी. अभी अभी तो आई हूं, थोड़ा सा इंतजार करो. पुरानी जींस पे दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
3: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
4: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
3: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
4: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
3: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
4: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
3: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
4: चलो
3: मतलब
4: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
3: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
4: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
3: टाइम खराब कर रहे हैं,
4: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
3: मेरा क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
4: तो मेरा यूरिन
3: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
4: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
3: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
4: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
3: भाई, जाकर नहीं कंप्लेन कर दे।
4: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
3: मैं नहीं दे रहा, तुझे जहाँ
4: ठीक है मैं निकलवा लूंगा,
3: ठीक है।
4: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
3: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
4: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
3: हाँ ठीक है, देख ले
4: भाई।
3: हाँ ठीक है।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26+ DIY

0: subjects, slime se lekar crafts tak, designed for every child's age and theme. Saath mein pizza, popcorn aur unlimited fun. Visit the craftyhands.com or call 732-397-0057.
1: Is Diwali, jab apno ke sang roshni aur pyar ka mahol ho, to Red Label ke swad aur kadakpan se ghule har ek moment. Red Label ki har ek roshni wali chuski, दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
2: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
3: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
2: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
4: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Listener mein back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
12: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो हो आसमान छूने लगा। दैट इज वाई 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RawJewels.com।
2: नो
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
8: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
9: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट VIRANIJewelers.com।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इन्होंने तो इसको द मिसगाइडेड काइट बोल दिया था। पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देव आनंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे सारी परमिशंस ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो डालना ही था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म ही गेव एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये द मिसगाइडेड गाइड है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने विद मी।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का बीजीएम

0: is the biggest hero of the film, followed by director of photography Sudhir K. Chaudhary. Jis tarah se Sudhir Chaudhary Ajay Devgan ki aankhon ko parallelly istemal karta hai parde par, you have to see it on a big screen entertainer theater. Teri choice of theater mein jaake dekh le. And of course, the third and the biggest hero of the film Drishyam is Ajay Devgan. Vijay Salgaonkar kya karta hai? Film jinhone follow nahi ki unko pehla half zara sa slow lag sakta hai, but second half dekhne ke baad tere ko pata chalega ki pehla half slow hona kyon zaruri tha. Jo original story writer hai Jeetu Joseph, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉइलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
5: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
7: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
6: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viraniejewelers.com.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
12: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं आपको बता रही थी कि देव आनंद और विजय आनंद ने भाई जब अपने म्यूजिशियंस फॉर द फिल्म चूज किए, उनको हायर किया, तो उसमें थे हसरत जयपुरी साहब एज लिरिसिस्ट। लेकिन कुछ टाइम देने के बाद ना दोनों भाइयों को हसरत जयपुरी साहब के गाने कुछ समझ नहीं आए, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को हायर किया। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म के गाने बनाने शुरू किए। लेकिन जब हसरत जयपुरी साहब जा रहे थे और शैलेंद्र जी आ रहे थे, तो हसरत साहब ने ना एक गाना जो आधा अधूरा था वो सुनाया था शैलेंद्र जी को, और उस गाने की जो पहली लाइन थी ना वो शैलेंद्र जी ने रखी। वो गाना ये था, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन दी थी हसरत साहब ने, आगे इसको कंटिन्यू किया शैलेंद्र जी ने।
1: जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सता।
0: So this line, दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए, ये वाली जो लाइन है ये हसरत साहब की थी। लेकिन अगर आप क्रेडिट देखोगे तो ये शैलेंद्र जी का है, बिकॉज आफ्टर दैट द एंटायर सॉन्ग वाज रिटन बाय हिम। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Yeah.

विजय आनंद ने दादा को बोला था कि इस पूरे गाने को ऐसे कंपोज करो जैसे हर स्टैंजा ना अलग गाना है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड, इस फिल्म की बातें और इस फिल्म के गाने। अच्छा, ये एक गाना जो गाइड का था ना, दिस वॉज अ वेरी टफ सॉन्ग टू कंपोज। एक तो ये लंबा भी था, इसमें हरकतें भी बहुत सारी थी और दादा को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो विजय आनंद हु इज डायरेक्टिंग द फिल्म, उन्होंने पता है उनसे क्या कहा कि हर स्टैंजा को ऐसे कंपोज करो जैसे कि ये अलग गाना हो। एंड विजय आनंद ऑल्सो थॉट कि गाइड में ना वो हर स्टैंजा को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे, जबकि वो हुआ नहीं बिकॉज वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस इस गाने में था। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: हेलो।
1: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
0: हेलो
1: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
0: हेलो
1: हाँ बेटा, बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
0: तुम कौन हो?
1: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
0: क्यों आ जाऊं?
1: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
0: तुम्हें बात करनी है?
1: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
0: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
1: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
0: अरे किसका अंकल?
1: बेटा तुम्हारा अंकल।
0: ये कब आ गया?
1: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
0: हेलो
1: बेटा बात सुनो।

0: जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
0: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
0: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
0: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन? तू ये बता।
0: ये है 9th लेवल। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांव में, ठीक है?
0: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा, आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
0: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो इस दिवाली सांगम।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
8: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
9: बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं, पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं, फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रसमलाई का चलन शुरू करते हैं, रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
10: नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुराएल।
11: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
11: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
13: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
14: Tera kya hoga kalya?
15: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
14: Ab mirchi kha.
16: Radio Mirchi. It's hot.
17: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडीज से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो एसडी बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया जा रहा था, फिर चाहे वो उनके बेटे आरडी बर्मन साहब ही क्यों ना हो। सो एसडी बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले लो, यू नो इतने सारे गाने, कांटों से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। एसडी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज़ है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट फिल्म

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अभी मेरे साथ में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं। लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है। हेलो,
3: हाय, माय नेम इज यास्मिन।
2: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम।
3: थैंक यू।
2: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है?
3: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम। सो या एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन।
2: ओह, दैट्स स्वीट। सो इंडिया में कहाँ से हुआ?
3: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे।
2: बॉम्बे, ऑलराइट। तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है। विगारी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार, ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। मेरा सवाल यास्मिन से ये है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए।
3: द गंगा रिवर।
2: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर। कंग्रेचुलेशन। और आप अगले राउंड में मूव करते हैं।
1: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com। नवरात एकत स्पिरिट।
5: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
4: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांची 7 कलाक थी।
5: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट GayatriCenter.org टुडे।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
8: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
9: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट my3usa.org।
10: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Listener mein back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
16: Ah, ah,
0: ah, ah. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया। एस डी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया अनपुरानी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
7: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब पहला सीन लिया गया तो डायरेक्टर विजय आनंद को लगा कि देव साहब के आगे वैजंती माला तो थोड़ी चबी चबी लग रही है पुरानी जीन्स पे. आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. सो वैजंती माला को इस फिल्म के लिए चूज किया गया था और डायरेक्टर विजय आनंद ने ना ऐसे ही जब फर्स्ट टेक लिया तो दे थॉट कि वैजंती माला देव साहब के आगे थोड़ी प्लम्प लग रही है. अब भाई विचार विमर्श हुआ देव साहब से भी, फिर क्या हुआ, इन केम वहीदा रहमान. और जब वहीदा रहमान आती थी तो एक्टिंग के साथ अपने डांसिंग स्किल्स भी लेकर के आती थी. ये आपको देखने को मिलेगा गाइड में जब उन्होंने वो गाना किया है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है. ओ हो हो पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है ना तो बस इस आवाज़ के पीछे आपको मिल जाऊंगी फेसबुक और इंस्टा पे. हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love. That's RJ SHREYA श्रेया विद लव.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इनको फॉरेन भेजा गया था कलर की टेक्निक को बारीकी से समझने के लिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। ये नव केतन प्रोडक्शंस की यानी देव साहब की, उनके भाई विजय आनंद की पहली कलर फिल्म थी। अब हुआ ये कि विजय आनंद ने पहली बार एज एडिटर कमान पकड़ी थी अलोंग विद बाबू शेख एंड गाइड वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म। सो विजय आनंद चाहते थे कि हर चीज ना एकदम कमाल हो, पहली कलर फिल्म है उनकी खुद की तो इट हैज टू बी परफेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने सिनेमेटोग्राफर फेली मिस्त्री जी को ना अब्रॉड भेजा था, हॉलीवुड भेजा था टू नो द टेक्निक टू शूट द फिल्म इन कलर एंड इट केम आउट सो ब्यूटिफुल। अगर आप रेट्रो फैन हैं और आपने गाइड नहीं देखी तो क्या आप रेट्रो फैन हैं? और पता है आपको ये किसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज माई मॉम हु सेड कि बाकी रेट्रो फिल्म के बारे में तुम बहुत बात करती हो, गाइड इज अ मास्टर पीस एंड इट इज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसी फिल्म की।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप

0: के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर कि भाई क्या
1: हाँ,
0: कमी
1: इस तरह
0: है।
1: से प्रोसीजर हमारा इस तरह
0: हाँ
1: से।
0: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया
1: हाँ
0: यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था,
1: अच्छा
0: तो अगर 2-3 ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर 2-3 ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं कि
0: चलो
1: मतलब
0: मैं
1: अगर
0: कह रहा
1: बाद
0: हूँ
1: में कोई
0: ज्यादा
1: जरूरत
0: सैंपल,
1: पड़ती
0: आप
1: है तो।
0: 9 ड्रॉप मान लो, 9 करते होगे, आप 2 कह रहे हो, मैं तो 9 पकड़
1: अरे
0: के चल रहा
1: भैया,
0: हूँ।
1: 2-4 9 का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके
0: हाँ तो
1: हमारे।
0: वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप 3 ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो
1: तुम ही
0: ना।
1: टाइम खराब कर रहा है, मेरा
0: मतलब
1: भी और
0: नहीं,
1: अपना
0: ये
1: भी
0: तो
1: यार।
0: ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा
1: अरे
0: पेशाब लूट
1: लूटने
0: रहे हो
1: वाली
0: आप।
1: बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
0: नहीं
1: था
0: तो
1: तो
0: मेरा
1: यहाँ पे
0: यूरिन
1: पीआई का सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वहां पे
0: यार,
1: भी यही
0: सैंपल मैं
1: प्रोसीजर
0: वहां
1: रहता
0: से भी
1: यार।
0: वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके
1: अरे
0: पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
0: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा।
1: भाई जहाँ
0: ठीक
1: करनी है
0: ठीक
1: कंप्लेंट
0: है,
1: कर दे कर
0: मतलब
1: दे
0: आप
1: कर
0: नहीं
1: दे
0: दे
1: कर
0: रहे
1: दे
0: मेरा
1: जा,
0: यूरिन
1: मैं
0: अब।
1: नहीं दे रहा तुझे, जहाँ
0: हाँ
1: कंप्लेंट
0: हाँ
1: करनी है कर
0: ठीक
1: दे,
0: है,
1: जा जो
0: मैं
1: करना है
0: निकलवा
1: कर दे।
0: लूंगा,
1: ठीक है
0: और उसको
1: हाँ ठीक
0: संभाल
1: है
0: के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा,
1: हाँ।
0: उसको संभाल के रखना, फेंकना
1: अरे
0: मत।
1: भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा,
0: ठीक
1: हाई
0: है
1: कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा,
0: ठीक
1: जहाँ
0: है,
1: पे भी जाना है जा
0: मैं
1: तेरी
0: देखता हूँ
1: मर्जी
0: मेरा
1: है।
0: यूरिन कैसे
1: हाँ
0: वापस
1: ठीक
0: नहीं
1: है,
0: आता।
1: देख ले देख ले
0: ठीक
1: देख
0: है
1: ले, चल
0: ठीक है भाई।
1: हाँ ठीक है।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ, सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
5: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
4: Wait, they can see us on Sunday?
5: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: ओह नो!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islip.
12: नौ नौ लखा वाला हार पहना है चुराएर।
13: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
14: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
13: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-72 क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
18: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ मिर्ची पर।

देव साहब को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, विजय यानी उनके भाई विजय आनंद, हु वाज एडिटिंग द फिल्म, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, चलो एक काम करते हैं, गाना बना लो, बाद में देखेंगे रिटेन करना है कि नहीं करना है। बट बाय द टाइम इस गाने की शूट एंड हुई, ही लव्ड द सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, गाइड फिल्म की बात हो रही है, देव साहब की फिल्म थी ये, एंड इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एस टी बर्मन साहब, गाने लिखने वाले शैलेंद्र जी, और उन्होंने एक गाना लिखा जिसपे वहीदा रहमान ने क्या परफॉर्मेंस दी। द सॉन्ग वॉज, अब ये गाना जब बनने लगा ना तो देव साहब को बिल्कुल नहीं पसंद आया, उनको लगा कि क्यों ही रख रहे हम ये गाना। लेकिन बाय द टाइम ये गाना शूट होकर के एकदम कंक्लूड हो रहा था, ही लव्ड द सॉन्ग, एंड फिर इस गाने को रिटेन किया गया, एंड व्हाट अ प्रिटी प्रिटी सॉन्ग। ये गाना मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: नवरात्रि का माहौल चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में

0: एनर्जी मॉर्निंग्स, और आप पता करते हमारे साथ और कौन है जो फोन लाइन पर है। हेलो,
1: हाय प्रिसिला, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, दिस इज अनु।
0: हाय अनु, क्या चल रहा है नवरात्रि में?
1: कुछ नहीं, प्रिपरेशन चल रहा है। आई हैव ट्विन गर्ल्स हु आर 2 इयर्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड, सो आई एम प्लानिंग टू ड्रेस देम अप एंड देन लाइक हैव फन, डू सम डांसिंग विद देम।
0: ओह, दैट्स सो क्यूट। तो चलिए जल्दी से मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आपको फटाफट से बिल्कुल क्विकली आंसर करना है।
1: श्योर,
0: टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड, जल्दी से मुझे बताइए विच इंडियन सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी?
1: जयपुर।
0: ऑलराइट, दैट्स द करेक्ट आंसर। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
2: मिर्ची 9 लाख का हार, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
2: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
7: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
6: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
7: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। SD कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
8: Nine nights, one divine spirit.
9: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
8: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 PM.
9: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Naam Yagya on the 19th and Sharat Purnima Garba on the 25th.
8: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

ये मूवी दो वर्जन में शूट हुई थी, एक इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस। और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के साथ। और फिर हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैशेस भी हुए थे, जिसकी वजह से देव साहब ने इसकी बागडोर संभाली, अपने भाई को भी संभलवाई और नव केतन प्रोडक्शंस के अंडर में ये फिल्म को बनाया गया। टॉकिंग अबाउट द फिल्म ऑफकोर्स गाइड, पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो हाईवे पे भी जाना है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज Only on Mirchi, it's hot.
2: And Ajay Devgan के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज as a film review person कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Hislin.
8: Mujhe na lagha manga tere ho siya deewane.
9: Sirf aapko nahi, Mirchi ke sang ab pure 9 lucky winners ko milega 9 gold chains.
10: Are kehna kya chahte ho?
9: Kyunki is navratri Veerani Jewelers lekar aaya hai Mirchi 9 luck ka haar. 9 navratri nights, 9 golden opportunities. Har din jeet sakte hain. One precious gold chain. Participate karne ke liye WhatsApp Navratri to 9033647244. That's 9033 Mirchi. Aur taiyar ho jaiye for your 9 rapid fire questions presented by Veerani Jewelers
11: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit VeeraniJewelers.com.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, मंडे की मॉर्निंग और मंडे की इवनिंग दोनों बिल्कुल अलग लोग होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो इसीलिए क्योंकि मंडे मॉर्निंग में ना हम अलार्म से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, कॉफ़ी भी काम जैसी लगती है और इनबॉक्स देख कर तो लगता है कि अरे रे, वीकेंड इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। लेकिन मंडे की शाम तक पिक्चर थोड़ी सेटल हो जाती है, मीटिंग्स हो चुकी होती है, ई मेल्स का शौक भी निकल चुका होता है और अब बस घर पहुँचने की रेस चल रही होती है। और मुझे ना इसीलिए मंडे इवनिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ये वीकेंड और नए हफ्ते के बीच का वो प्यारा सा हैंडशेक होता है, एक रिमाइंडर होता है कि चलो एक और नया चैप्टर शुरू हो गया। तो आज ड्राइव थोड़ी आराम से कीजिए, प्लेलिस्ट थोड़ी लाउड रखिए और स्माइल करना मत भूलिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आज की मंडे की शाम को रिलैक्स करने के लिए आपका बॉलीवुड गो टू सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा बॉलीवुड गो टू सॉन्ग ये रहा आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vie est pas la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा, बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अबे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आया ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzylin।
10: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
12: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.

0: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
1: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
0: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
6: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
5: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, नवरात्रि के 9 रातें यानी गोल्ड जीतने के 9 चांसेस और मिर्ची पर आपकी किस्मत का धमाका। वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट मिर्ची 9 लक का हार। तो चलिए देखते हैं आज किसके नाम होती है गोल्ड की चमक। नमस्ते मनन जी।
2: हेलो, नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: एकदम मस्त, आप बताइए।
1: एकदम बढ़िया। क्या आप नवरात्रि के लिए तैयार हो?
2: एकदम, वेटिंग फॉर इट।
1: और क्या आप गोल्ड जीतने के लिए तैयार हो?
2: एकदम एकदम।
1: तो चलिए मैं आपको पूछूंगी एक बहुत ही आसान सा बॉलीवुड का सवाल और नवरात्रि से ही रिलेटेड है, और उसका अगर आप सही जवाब देते हो तो आप पहुंच जाओगे हमारे अगले राउंड में। ठीक है?
2: ठीक है।
1: चलिए, तो आपका बहुत सा आसान सा जो सवाल है वो ये है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा गाना है, नगाड़े संग ढोल बाजे। तो ये जो गाना है, इस गाने पे कौन सी एक्ट्रेस ने डांस किया है?
2: दीपिका पादुकोण।
1: अरे क्या बात है, एक सेकंड भी नहीं लगा। चलिए,
2: थैंक यू सो मच,
1: कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप एंटर होते हो हमारे अगले राउंड में। तो दोस्तों, आप भी अगर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हो तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए हमारे मिर्ची 9 लक का हार में, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। नवरात्रि के 9 नाइट्स और गोल्ड जीतने के 9 गोल्डन चांसेस। तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, टाइप कीजिए नवरात्रि और भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद राजजूस.com।

0: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
3: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
4: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमर होल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
7: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी बिल देके पसीना छूट रहा है? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है? अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं, और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले दो साल पिछले दो साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
13: पेड फॉर बाय desiblue.org, नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी कैंडिडेट और कैंडिडेट्स कमेटी।
14: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे, टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
17: 2108069।
18: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
19: अरे कहना क्या चाहते हो?
18: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

कुछ स्पेशल वीकेंड्स के साउंड्स वो होते हैं जो अलार्म से नहीं आते बल्कि किचन से आते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए हमारे उन्हीं स्पेशल वीकेंड को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। मतलब टीवी कहीं पर लाउड चल रहा है, कोई न्यूज़पेपर लेकर बैठा है, किचन में से कुकर की सीटी और फिर तड़के की वो खुशबू जो बिना अनाउंसमेंट के बता देती है कि लंच रेडी हो चुका है। और मज़े की बात तो ये है कि बचपन में यही हमारा जो आइडियल वीकेंड हुआ करता था उसमें दाल चावल वैसे तो यार एवरीडे फूड लगता था, लेकिन बड़े होने के बाद घर से जब दूर आए और न्यू जर्सी में अपना किचन बना लिया तब समझ आया कि वो सिंपल से दाल चावल आज कितना स्पेशल है। गरम चावल, ऊपर दाल, थोड़ा घी और सडनली ये वीकेंड एकदम स्पेशल हो गया। और ऐसे मील्स में ना हीरो फैंसी नहीं होता, हीरो होती है अच्छी क्वालिटी की तूर दाल। दी प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मंधी तूर दाल इज प्रीमियम क्वालिटी इंडियन ओरिजिन दाल स्पेशली सूटेड फॉर फेवरेट्स लाइक गुजराती दाल,

सांबर और खिचड़ी। तो दोस्तों अगली ग्रोसरी रन पे घर ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मधी तूर दाल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और संडे लंच की वॉर्मथ आ चुकी है, तो यार अभी यहाँ पर हमारी जो शाम की प्लेलिस्ट है उसका भी एक प्यारा बॉलीवुड नंबर हो जाए, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ।

0: टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

0: सब घर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
3: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
2: Wait, they can see us on Sunday?
3: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
4: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
5: अरे कहना क्या चाहते हो?
4: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, नवरात्रि की धूम शुरू हो चुकी है और नवरात्रि के 9 रातों में गोल्ड चेन जीतने का मौका आपकी किस्मत में है या नहीं, अगर ये जानना है तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लक का हार। तो दोस्तों आज किसकी किस्मत में गोल्ड की चमक है, चलिए देखते हैं। नमस्ते अवनी जी, कैसे हो आप?
2: बस मजे में, आप बताओ?
1: मैं भी एकदम मजे में, और सबसे ज्यादा मजे में तो इसलिए हूं क्योंकि आपके साथ मुझे मिर्ची 9 लक का हार खेलने मिलने वाला है, brought to you by वीरानी ज्वेलर्स। तो क्या आप excited हो?
2: Yes, yes, I'm very excited.
1: तो अभी आपको मैं पूछूंगी एक सवाल, बहुत ही आसान सा नवरात्रि से रिलेटेड सवाल, बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल। उसका सही जवाब देते हो तो आप पहुंचोगे हमारे नेक्स्ट फाइनल राउंड में जिसमें आप जीत सकते हो गोल्ड चेन। ओके? चलिए तो अवनी जी, आपका सवाल है, एक बहुत ही प्यारा सा नवरात्रि का गाना है, ढोली तर ढोल बाजे, उसमें सलमान खान के साथ एक्ट्रेस कौन है?
2: ऐश्वर्या राय।
1: पक्का?
2: यस।
1: ओहो, ये तो गलत हो गया, ऐसा मैं नहीं कह सकती। बिल्कुल सही जवाब अवनी जी।
2: थैंक यू।
1: तो आप क्वालिफाई होते हैं हमारे फाइनल राउंड के लिए, यानी मिर्ची 9 लक का हार जीतने के लिए, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। और दोस्तों अगर आप भी मिर्ची 9 लक का हार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जल्दी से नवरात्रि टाइप कीजिए 9033647244 हमारे मिर्ची के नंबर पर, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए @RJMirchiSiddhi, क्योंकि यार एक जो 9 रातें होने वाली है उसमें 9 मौके आपको मिलेंगे टू विन गोल्ड चेन। तो आज ही रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच अवनी जी, सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: हेलो
1: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन सा काटू सर?
0: टाइम कितना है
1: सर? डेढ़ से दो मिनट।
0: कैंची ले ली सर।
1: लेकिन सिचुएशन है।
0: आसपास
1: है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
0: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
1: ठीक है।
0: हरा काट के देख धीरे से।
1: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशन।
0: ताली बज रही है? कौन है?
1: ये ताली बजा रहे हैं सर। ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
0: शोरूम का रिबन काट रहा है।
1: हाँ,
0: मैं इसी को पूछा फिर तूने।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
5: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
4: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
6: इस जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली जो हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. All taking charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
13: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती
12: है, क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit VIRANIJewelers.com. 9 nights, 1 divine spirit.
15: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
14: Join daily Garva October 11th to 19th at 7 p.m.
15: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharat Purnima Garba on the 25th.
14: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.

0: शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
1: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
0: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
2: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
3: 2108069।
4: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
5: अरे कहना क्या चाहते हो,
4: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
7: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai.
10: Ek hi hota hai.
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वीकेंड तो बहुत ही खूबसूरत था, वेदर भी अब फुल समर मोड में आ चुका है, लेकिन फाइनेंशियल वेदर थोड़ा मिक्स चल रहा है। मार्केट चेंज हो रहे हैं, मॉर्गेज रेट्स मूव कर रहे हैं और नेचुरली बायर्स के माइंड में सवाल भी बढ़ रहे हैं कि यार अभी बाय करें, वेट करें, या अपने एग्जिस्टिंग होम इक्विटी को किसी बिगर फाइनेंशियल गोल के लिए यूज़ करें। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स से लेकर रीफाइनेंसिंग कंसिडर करने वाले होम ओनर्स तक हर किसी के लिए सिचुएशन अलग है और सही इन्फॉर्मेशन ऐसे वक्त में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और इसी चेंजिंग लैंडस्केप को सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: Good evening, Mitchell. This is your friend Bish from Lion Mortgage. Hope you all had a wonderful weekend. For some, it is still a long weekend because of Columbus Day. And today, the U.S. markets are mixed. Two of the most common mortgage terms are 30-year and 15-year fixed mortgages. Both lock in your rate for the entire loan term. A 30-year mortgage is popular because it has relatively low monthly payment, but it comes with a higher interest rate than shorter terms. And because you accumulate interest for 3 decades. A 15-year mortgage can be a good choice because it has a lower rate than you will get with longer terms. So you will pay less in interest over the years. So any questions on home buying, you need a pre-approval, please don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 7.125%. 20-year fixed mortgage rate, 7%. 15-year fixed mortgage rate, 6.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Remember, listeners, cash-out refinance still remain very popular as homeowners have tapped newfound wealth. Homeowners gained a record amount of home equity in past year as housing prices have surged. More and more homeowners are trying to take cash out of their homes with values rapidly increasing. Investors are also pulling on the investment properties as well. Remember, listeners, we are offering zero closing cost refinance option. So please don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। Celebrate this Diwali with RajJewels.com.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सिया दीवाने।
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com.
12: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन

0: of relationships, business and career. Call 732-366-6777.
1: Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. To grab this offer, conditions apply.
2: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
6: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट.
8: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
9: 2108069.
10: चुराने का जरूरत नहीं. मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
11: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है.
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
4: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
12: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा.
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: Radio Mirchi, it's hot. ninety two point seven
15: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है और तैयारियां शुरू हो चुकी है आपको सोने की चेन्स देने का भी, क्योंकि इस बार वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट मिर्ची 9 लाख का हार। जी हाँ, नवरात्रि के 9 नाइट्स और गोल्ड जीतने के 9 गोल्डन चांसेस। तो आज किसकी किस्मत खुलती है, चलिए जानते हैं। मेरे साथ है कॉल पर ध्वनित जी। नमस्ते ध्वनित जी।
2: नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: बस फर्स्ट क्लास, आप बताओ?
1: मैं भी एकदम बढ़िया। तो आप बताइए, नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है?
2: एकदम जोर से।
1: क्या बात है, तो चलिए आपकी डांडिया तो रेडी है और हमारे सवाल आपके लिए रेडी है फॉर मिर्ची 9 लाख का हर कॉन्टेस्ट ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। तो आपके लिए जो ये सवाल है बहुत ही आसान सा बॉलीवुड का सवाल है। आपने नवरात्रि के तो बहुत सारे गाने सुने ही होंगे, उसमें से एक गाना है छो घड़ा थारा। तो वो ये जो गाना है छो घड़ा थारा, कौन सी मूवी का गाना है?
2: लव यात्री।
1: पक्का?
2: पक्का।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ आप आ जाते हो हमारे फाइनल राउंड में और आपको जीतने का मौका मिलेगा सोने की चेन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी नवरात्रि।
2: थैंक यू, सेम टू यू।
1: और दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हो नवरात्रि के इस सुनहरे अवसर पर गोल्ड चेन जीतने का मौका, तो आज ही रजिस्टर कीजिए मिर्ची 9 लाख का हार में ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। चलिए तब तक सुनते हैं अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deepkhao to jaano.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड, इज़िलन।
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
9: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
9: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गम।
12: Inefficient,
13: very complex,
14: clumsy और
15: confusion ही confusion।
16: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ अपने business के लिए।

अब ये ब्रेकिंग न्यूज देने वाले रिपोर्टर्स को अगर खुद ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बनना पड़े तो शमशान द लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। OTT पर अक्टूबर 9th को आ रही है इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर रिपोर्टिंग लाइव, जिसमें नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। अब जरा इमेजिन करते हैं कि एक रिपोर्टर जो सिर्फ एक स्टोरी कवर करने निकली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में खुद एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती है। और साथ में है देवेन भुजानी, अदिल हुसैन और शेखर सुमन। वैसे मुझे तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जर्नलिज्म, दूसरी तरफ सस्पेंस, और बीच में वो सवाल कि सच तक पहुंचने के लिए ये कितना रिस्क ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्राइम थ्रिलर जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, या वो जहां एक ऑर्डिनरी पर्सन खुद डिटेक्टिव बन जाते हैं? DM मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और अब इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा ब्रेक देते हैं, क्योंकि अगला गाना है एक ऐसी फिल्म से जहां एक फोन कॉल ने पूरी कहानी ही बदल दी थी। तो अभी आप भी जरा याद करना इस मूवी की स्टोरी क्या थी। फिलहाल बजाते हैं ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और हमारी यहाँ पर नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, लेकिन उसी के साथ हमारी आपको गोल्ड चेन देने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मिर्ची पर इस बार मिर्ची 9 लख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स, यानी नवरात्रि की 9 रातें और 9 मौके गोल्ड चेन जीतने के। तो चलिए देखते हैं आज मेरे साथ कौन जुड़ने वाले हैं टू विन गोल्ड चेन। आई हैव विथ मी द वंडरफुल रीमा जी। नमस्ते रीमा जी।
2: नमस्ते जी,
1: कैसे हो आप?
2: मैं बढ़िया, आप कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया। तो डांडिया खेलने के लिए तैयार हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलिए, तो वैसे आपका डांडिया का फेवरेट गाना कौन सा है?
2: ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, बड़ा सभी अच्छे लगते हैं।
1: तो कुछ भी बजा दो आप डांडिया खेलना चालू कर दोगे, राइट? चलिए, तो आपको मैं पूछूंगी मिर्ची 9 लख का हार इस कॉन्टेस्ट के लिए एक आसान सा सवाल, उसका अगर आप जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए टू विन गोल्ड चेन। ठीक है, तो तैयार हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलिए, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, ये शाहरुख खान की किस मूवी का गाना है?
2: उड़ी उड़ी जाए।
1: जी ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दिया। राज
2: रईस का है शायद।
1: पक्का? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। रईस का गाना उड़ी उड़ी जाए, नवरात्रि का सबसे पॉपुलर गाना। इसी के साथ आपको हमारे फाइनल राउंड में आने का मौका मिलेगा टू विन गोल्ड चेन। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
2: ऑलराइट, थैंक यू।
1: तो चलिए, आपसे हमारी मुलाकात होगी जल्द ही। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो राइट डाउन नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJ_IDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Grabana. Murga, murga. Na viva la murga. Energy, murga.
1: Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा इस तरह।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं।
1: भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
2: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं,
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: लूटने वाली बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा
1: कहीं और दे देता फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
2: मैं निकलवा लूंगा। ठीक है और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है देख ले देख ले देख ले।
2: ठीक है भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स
3: हॉट। लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
8: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest

0: natural diamond store. Best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers. Ladies first choice.
1: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल. कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो. 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम. साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन. विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057.
2: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. To grab this offer, conditions apply.
3: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं. पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं. फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं. रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं. जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं. ये दिवाली नानक वाली. सो गुड सो प्योर. इट्स नानक.
4: चुराने का जरूरत नहीं. मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
5: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है.
4: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
0: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
6: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
7: अरे माँ अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना. इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
6: अरे वाह इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट.
8: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID
9: 2108069.
4: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
10: अरे कहना क्या चाहते हो.
4: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार. 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
0: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.

फॉल इज फाइनली फॉलिंग दोस्तों, शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, न्यू जर्सी में फाइनली फॉल आ रहा है। वो हवा में हल्का हल्का क्रिस्प फीलिंग, सुबह का थोड़ा कूल टेम्परेचर और ट्रीज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। एंड सडनली इवनिंग ड्राइव भी थोड़ी सिनेमेटिक लगने लगी है, क्योंकि मुझे ना फॉल की सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि सीजन आपको फोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए, बस एनवायरमेंट खुद ही थोड़ा और ब्यूटिफुल हो जाता है। कॉफ़ी थोड़ी और बेटर लगने लगती है, वॉक थोड़ी और लॉन्गर हो जाती है, हुडी फाइनली जस्टिफाई होती है, और रोड ट्रिप के बिना भी ट्रीज देखकर लगता है कि यार सीन तो सेट हो चुका है। मतलब मन बिल्कुल ऐसा करता है कि तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। तो बताइए, आपके लिए परफेक्ट फॉल मोमेंट क्या है? चाय, लॉन्ग ड्राइव, वॉक, पम्पकिन स्पाइस, या बस घर की विंडो से ट्रीज को देखना? डीएम ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और वेदर ने तो ऑलरेडी साउंड ट्रैक मांग ही लिया है, तो अगला गाना उसी फॉल ड्राइव मूड के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अभी मेरे साथ में हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं. लेट्स फाइंड आउट उनका नाम क्या है. हेलो.
2: हाय, माय नेम इज यास्मिन.
1: हाय यास्मिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम.
2: थैंक यू.
1: अभी नवरात्रि की क्या तैयारी चल रही है.
2: आवर टाउन हैज अ लॉट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, सो एवरी ईयर वी होस्ट अ वेरी नाइस गरबा एंड दिवाली फेस्टिवल अराउंड दिस टाइम. सो या, एवरीबॉडीज होम्स आर डेकोरेटेड एंड देयर इज एक्साइटमेंट इन द एयर, सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन.
1: ओह, दैट्स स्वीट. सो इंडिया में कहां से हुआ.
2: इंडिया, आई एम फ्रॉम बॉम्बे.
1: बॉम्बे, ऑलराइट. तो फटाफट से लेट्स फाइंड आउट बॉम्बे वालों का लक चलता है कि नहीं चलता है. विगानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हाय कॉन्फ्रेंस चल रहा है. मेरा सवाल यास्मिन से यह है कि इंडिया में कौन सी रिवर को सबसे होली माना जाता है. फटाफट से आंसर बताइए.
2: द गंगा रिवर.
1: द गंगा रिवर इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशन. और आप अगले राउंड में मूव करती हैं.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: This festive season, Kalal of New Jersey presents two mesmerizing nights.
5: October 17th, the voice behind the famous Billo Rani, Richa Sharma.
4: And October 18th, the voice behind Barish, Ash King. Book individual tickets or packages now at kalal.com. That is KALLOL.com. Or call 917-440-9266.
6: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
8: थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम द सेम ट्रेडिशनल टेस्ट फ्लेवर एंड फ्रेशनेस गारंटीड.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है. दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
13: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess.

0: awareness of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need another 2 years of daily bad news. Be sure to vote for Democrats.
1: Paid for by Desi Blue, desiblue.org, not authorized by any candidate or candidates committee.
2: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
3: अरे कहना क्या चाहते हो,
2: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
4: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra Saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. To grab this offer, conditions apply.
10: Tera kya hoga, Kalya?
11: Sardar, main aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: Sham Shardar, let's do not donkey, have a funky time.
14: बॉलीवुड का एक ऐसा काउच जहाँ बैठने के बाद सेलिब्रिटीज़ को अपने आंसर से ज़्यादा अपने एक्सप्रेशन संभालने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं वो देखकर क्या हो जाए उनके साथ। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी, और बात हो रही है कॉफ़ी विद करण की, जिसका अगला सीज़न 9 आने वाला है। और कहाँ जा रहा है कि ये तो फाइनल सीज़न होने वाला है। वैसे मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि यार इतने सालों से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इस काउच पर आ रहे हैं। नॉट जस्ट बॉलीवुड, बल्कि और भी बहुत सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट सेलिब्रिटीज, एंड ऐसे सारे एपिसोड्स तो धमाकेदार रहे ही है। तो कभी रैपिड फायर में कुछ फनी आंसर्स, तो कभी अनएक्सपेक्टेड कन्फेशंस, कभी फ्रेंडशिप की केमिस्ट्री, तो कभी एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो यार अगले दिन पूरे इंटरनेट की हेडलाइन ही बन जाता था। लेकिन मुझे इस शो की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लगती है कि उसका जो रैपिड फायर राउंड होता था, ओ हो हो, कोई भी बड़ी सीरियल जो आती थी ना जिसमें एकदम कलेश होता था, उससे कलेश उस रैपिड फायर राउंड में होता था। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने के लिए सेलिब्रिटीज को बहुत ही कम सेकंड्स मिलते थे, और कुछ बहुत ही खतरनाक जवाब बाहर आते थे। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप भी करण जौहर के उसी काउच पे हो, और वो पूछते हैं वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी यू वुड लव टू हैव कॉफी विद, तो आपका जवाब क्या होगा मुझे जरूर बताना। DM मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और कॉफी के साथ बॉलीवुड गॉसिप तो हो गई, तो चलिए बॉलीवुड म्यूजिक की बारी। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: ये घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: 0832-339-3155. Log on to lionmtg.com.
1: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
1: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
3: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट wiraniejewelers.com।
4: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
5: मुझे नौ लख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
1: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
6: अरे कहना क्या चाहते हो,
1: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
3: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट wiraniejewelers.com।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
9: बैट विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
9: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों, नवरात्रि की तैयारियां हमारी तो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और साथ ही में आपको गोल्ड जितवाने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है विद मिर्ची 9 लख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स। तो चलिए देखते हैं आज किसके किस्मत में गोल्ड की चेन है। आई हैव विद मी नेशल जी। हेलो नेशल जी।
2: आई
1: एम डूइंग गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम ऑल्सो वेरी गुड।
1: तो नेशल जी, हमारे काफी सारे लिसनर्स को पता है आप हमारे कंसिस्टेंट विनर रहे हैं, तो इसलिए आज का सवाल मैं आपको थोड़ा टफ पूछने वाली हूँ, चलेगा?
2: थोड़ा इजी रखो मेरे लिए।
1: देखिए दोस्तों, नेशल जी इज दैट वन पर्सन जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं और बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लगातार करते रहे और बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। तो नेशल जी, हमारे कंसिस्टेंट विनर रह के कैसा लगता है आपको?
2: मुझे लगता है कि मैं कस्टमर हूं रेडियो मिर्ची।
1: देखिए, आपकी तरफ से बाकियों को भी बताइए, कई बार लोगों को लगता है कि अरे रेडियो मिर्ची पे कॉन्टेस्ट हो रहा है, सच्ची में सोना मिलता भी है क्या? तो आप ही बताइए लोगों को कि क्या कॉन्टेस्ट होता है और कितनी धूम मचती है।
2: नहीं नहीं, सोना तो मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है।
1: बहुत नेशल जी के लॉकर में पड़ा हुआ है सारा। तो चलिए देखते हैं आज नेशल जी जीतते हैं कि नहीं। तो नेशल जी, आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है, वैसे आपके लिए थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन चलिए फिलहाल थोड़ा बहुत आसान सा सवाल भी बना के बताती हूँ आपको, ठीक है? और अगर ये सवाल का सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होता हमारे फाइनल राउंड के लिए एट विरानी ज्वेलर्स। ओके
2: ओके,
1: ठीक है, चलिए। तो आपके लिए जो सवाल है वो है, नवरात्रि का एक गाना है, हे शुभारंभ हो शुभारंभ, ये गाना कौन सी मूवी का है?
2: काइको से?
1: पक्का?
2: काइको से, यस।
1: ओहो नेशल जी, हर बार आप जीत जाते हो, लेकिन इस बार आपने गलत जवाब दे दिया, ऐसा मैं नहीं कह सकती।

0: सही जवाब दिया है।
1: अरे
0: चलो थोड़ा डराना तो बनता है आपको नैशल जी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए जिसमें आप जीत सकते हो सोने की चेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
1: ओके वाओ, थैंक यू सो मच।
0: और दोस्तों अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244 या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi. और नैशल जी जाते जाते हम मिर्ची पे क्या बोलते हैं?
1: सुनते रहो रेडियो मिर्ची।
0: क्या बात है, इट्स हॉट।
2: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अर 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाम शांतालाई सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पिक्चर छोड़ो, अब ऑडियंस कह रही है कि भाई मेरे पास तो 5 मिनट है, उतने में जो दिखाना है दिखा दो। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में यही एक इंटरेस्टिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब हम 3 घंटे की बॉलीवुड पिक्चर देखते थे, फिर आया OTT और हमने कहा कि चलो 8 एपिसोड्स बिंज कर लेते हैं। फिर रील्स ने हमें 30 सेकेंड में स्टोरी दिखाने की आदत लगा दी, और अब लग गई तो लग गई है आदत। और अब आ चुका है माइक्रो ड्रामा, मतलब छोटे छोटे एपिसोडिक शोज, जहां एपिसोड्स को सिर्फ कुछ मिनट्स मिलते हैं। मेट्रो का वेट कर रहे हो, कॉफी बना रहे हो, लंच ब्रेक हो, 5 मिनट मिले तो निकालो फोन और कहानी आगे बढ़ाओ। और मजे की बात तो ये है कि इंडिया के टॉप 12 फ्री एंटरटेनमेंट एप्स में अब 6 माइक्रो ड्रामा एप्स भी है। यानी ये जो शॉर्ट फॉर्म स्टोरीज है ना, अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ट्रेडिशनल OTTs को जोरदार टक्कर देने वाले हैं। और मुझे सबसे फनी बात तो इसका इवोल्यूशन लगता है, मतलब 3 घंटे की पिक्चर से 8 आवर का बिंज, और अब 5 मिनट ड्रामा। यानी अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है दोस्तों, लेकिन ड्रामा का एपेटाइट वो बिल्कुल

फुल साइज है। तो आप ही बताओ कि आपको प्रॉपर 2-3 घंटे की पिक्चर चाहिए बिंजवर्दी सीरीज, या 5 मिनट में प्यार धोखा बदला दी एंड भी चलेगा। डीएम ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब शॉर्ट फॉर्म की बातें बहुत हो गई, चलिए अगला गाना पूरा का पूरा सुनते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब। मैं हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आ गए मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैं क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अगर तू है

0: कौन सी, ये बता।
1: ना ऐसे, ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई, तो तुम और खराब हो जाओगे।
0: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
1: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा, आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
0: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो साढ़े मैं इंजेक्शन देता हूँ।
1: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
5: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
4: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
6: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels। RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
9: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
10: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
11: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 lucky विनर्स को मिलेगा 9 gold chains।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 lakh का हार। 9 navratri nights, 9 golden opportunities, हर दिन जीत सकते हैं 1 precious gold chain। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
14: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
15: Wow, यही तो है मेरा dream lehenga.
16: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें Miss India Bridal Store.
15: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
16: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
15: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Islin.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
12: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 lucky winners को मिलेगा 9 gold chains।
5: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
12: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 lakh का हार। 9 navratri nights, 9 golden opportunities, हर दिन जीत सकते हैं 1 precious gold chain। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
17: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
3: Radio Mirchi, it's hot.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और नगाड़े संग ढोल तो तैयार है ही। नवरात्रि की हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है, स्पेशली आपको सोने की चेन देने का, क्योंकि इस बार वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लक्का हार। तो दोस्तों, नवरात्रि की नौ रातें यानी नौ गोल्डन चांसेस टू विन गोल्ड चेन। तो चलिए देखते हैं आज किसकी किस्मत में गोल्ड की चमक है। आज मेरे साथ है दीपू जी। नमस्ते दीपू जी।
2: Hi.
1: How are you?
2: I'm good. How are you?
1: I am doing good. तो क्या नवरात्रि में डांस करने की तैयारी शुरू हो चुकी है?
2: अभी हम लोग ड्रेस अप करके we are going for गरबा।
1: देखिए ये लोग गरबा शुरू भी हो चुका है।
2: आप गुजराती है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है गरबा का।
1: नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये सिर्फ गुजरातियों का ही जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये पूरे इंडिया का, ये पूरे NRI कम्युनिटी सबका हक बनता है कि उतनी ही धूम के साथ हम सब नवरात्रि खेले और बहुत ज्यादा मस्ती करें, बहुत ज्यादा डांडिया खेले, गरबा खेले आप सबके साथ, राइट?
2: चलिए, का थोड़ा स्पेशल होता है।
1: बिल्कुल, तो आप जैसे कि मतलब वो बोलते हैं ना, नवरात्रि जब ही आती है हम सब गुजराती बन जाते हैं। कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कौन गुजराती है कौन क्या है, सब गुजराती बन जाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी के साथ इसी फेस्टिवल की खुशी में आपको सोने की चेन जितवाने का हमारा तो प्लान है, लेकिन देखते हैं कि आप जीत पाओगे कि नहीं। तो मैं पूछूंगी आपको बॉलीवुड का बहुत ही आसान सा सवाल नवरात्रि से रिलेटेड ही, और उसका सही जवाब देते हो तो फिर आप क्वालिफाई होते हैं हमारे फाइनल राउंड के लिए, ठीक है? चलिए, तो आपका सवाल बहुत ही आसान सा है, और ये सवाल का गलत जवाब दिया ना तो मतलब बदनाम कर रहे हो आप, राइट? तो देखो अभी तो अभी एकदम फुल गुजरात की आन बान शान आपके साथ। चलिए ठीक है, तो बॉलीवुड का

0: ठम ठम ठमक बाजे, बहुत ही प्यारा सा गाना है, गंगू बाई का गाना है। इसकी एक्ट्रेस कौन है?
1: आलिया भट्ट अपनी।
0: क्या बात करो, आलिया भट्ट थी?
1: हाँ,
0: अपनी आलिया भट्ट अपनी।
1: अरे 100 पर, हाँ मीन्स अपनी।
0: अरे अपनी ही आलिया भट्ट है। और सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। कंग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई होते हो गोल्ड चेन जीतने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आज गरबा में और भी जोर से नाचना, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे फॉर द फाइनल राउंड एट विरानी ज्वेलर्स। और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे आरजे मिर्ची सिद्दी को हमारे डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। और तब तक के लिए, अभी बहुत ही माहौल बन चुका है नवरात्रि का, तो अगला गाना भी नवरात्रि वाला, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची 9 लाख का हार, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: वीरानी ज्वेलर्स।
1: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हार चल रहा है। अगली कंटेस्टेंट जो है वो मेरे साथ लाइन पर है। लेट्स फाइंड आउट हु दैट इज। हेलो,
2: हाय।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल।
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड, हाउ आर यू?
1: हाय, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि टू यू।
2: सेम टू यू।
1: ऑलराइट शीतल, मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ और उसका जवाब देने पर डिपेंड करेगा कि आप अगले राउंड में जाते हैं कि नहीं जाते। ऑलराइट, मेरा सवाल अगले राउंड के लिए आपसे है कि कौन सी ऐसी इंडिया की सिटी है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताइए।
2: सिटी ऑफ द ड्रीम्स, बॉम्बे।
1: बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। एंड बॉम्बे यानी कि मुंबई इज ऑल्सो द सिटी ऑफ ड्रीम्स इन इंडिया। थैंक यू सो मच शीतल फॉर पार्टिसिपेटिंग। कंग्रेचुलेशंस, आप अगले राउंड में पहुंच गए हैं।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाई।

0: खुशियाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
2: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
3: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
5: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
6: October 24th and 25th, Hammarkhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: नो
9: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
10: चुराने का जरूरत नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लक का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
13: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
15: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
15: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
16: मुझे 9 लाख
10: की विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
17: अरे कहना क्या चाहते हो,
10: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लाख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
18: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
19: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
20: Radio Mirchi, it's hot.
21: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
22: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
23: दोस्तों कभी नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है, और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही

डिसीजन लिया, तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को कॉन्शियसली स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है, क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeetuRaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।

0: घर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: मुझे नौलखा मंगा दे रे दीवाने।
3: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: अरे कहना क्या चाहते हो,
3: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची 9 लख का हार। 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग wishes you and your family a very happy Navratri. Rajbhog will sweeten your festive celebrations. For orders, visit rajbhog.com या अपने local grocery store से अपनाइए राजभोग को।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची का
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची मंडी ग्रूव्ड ऑलरेडी लॉक और वीक का रिदम दोस्तों सेट हो चुका है विद दिस शो शाम शानदार लाइव विद योर वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय सायोनारा कह दूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमारी रोशी आने वाली है लव के कुछ फंडे लेकर। क्योंकि यार अगर आज के लोकल अपडेट्स म्यूजिक ओटीटी पिक्स के साथ अगर आपका मूड सेट हो चुका है तो थोड़ी यार लव लाइफ पे भी ध्यान दे दो विद रोशी के फंडे। तो कहीं ना जाइए, बने रही हमारे साथ right here on Mirchi. This is Mirchi Siddhi signing off.